आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। कुछ दुनिया सिर्फ कान नहीं सुनते, दिल महसूस करते हैं। कुछ गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, वो यादें बन जाते हैं। और कुछ फनकार जैसे वक्त के उस मोड़ पर मिलते हैं जहां हर सुर एक कहानी बन जाती है। पेश है कार्यक्रम सरगम। आज के सरगम समर्पित है एक ऐसे ही संगीतकार को जिन्होंने बॉलीवुड के संगीत में ताल का जादू बिखेरा, ओपी नायर। आए चलिए मेरे साथ एक ऐसे गीतों की दुनिया में जहां नायर साहब के सुर, गीतकारों के बोल और गायकों के जज्बात मिलकर बनाते हैं संगीत का एक रंगीन जादूगर सफर सरगम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं CID फिल्म के गाने से, जिसके गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, गायक रफी, आशा भोसले और शमशाद बेगम, संगीत ओपी नायर।

अब पेश है गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का गाना, जिसे गाया है गीता दत्त ने, संगीत ओपी नायर का, और फिल्म का नाम है हावड़ा ब्रिज।

अपेश है ओपी नायर का संगीतबद्ध गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने, फिल्म सीआईडी से, और उसके गीतकार है जान निसार अख्तर।

लोके जलोगे आत्मलोके रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे आत्मलोके रूठ के हमसे

0: लोगे आत्म लोगे रूठ के हंसे हाँ।
1: पेश है रफी और आशा की आवाज में एक देसी रंग, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है ओपी नायर। फिल्म का नाम है नया दौर।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, आपकी जिंदगी की रवानी। जारी है कार्यक्रम सरगम। लीजिए पेश है कश्मीर की कली का गाना, गायक रफी और आशा भोसले, संगीत दिया है ओपी नायर ने और इसके गीतकार है SH ब्याह।

सभी श्रोताओं की नज़र एस एस बिहारी का लिखा गाना जिसका संगीत दिया है ओपी नायर ने, गाया आशा भोसले और शमशाद बेगम ने, फिल्म किस्मत से।

लीजिए, आप सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का गाना फिल्म मेरे सनम से, संगीत ओपिन।

अब पेश है इस कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म माया से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, इसका म्यूजिक दिया है सलील चौधरी ने और इसके बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

आज के सरगम में हमने सिर्फ गाने नहीं सुने, हमने एक ऐसे फनकार की जज्बात महसूस किए जो ताल से मोहब्बत करता था और धुन से रिश्ता निभाता था। इसके साथ ही सरगम कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सरगम के संग। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: अगले जन्म भी तेरा पुत बन के आवां। बस यही अरदास है। ओ लोक जहाजा ते लख चढ़दे होणगे बापू, मेरे लिए तेरे मोढ़े ही बिजनेस क्लास है, मेरे लिए तेरे मोढ़े ही बिजनेस क्लास है।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए आज मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जिसको लिखा है सरस्वती कौल बट जी ने, जो पंचकुला में रहती हैं। कश्मीरी पंडितों को अपने वतन से बेघर हुए अब लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं, यानी 3 दशक से ऊपर। बच्चे जवान हो गए, जवान बुजुर्ग और बुजुर्गवार या तो हैं या फिर त्राही त्राही करते सिधार गए। कैसे दुखद त्रासद स्थिति है कि नई पीढ़ी के किशोर युवाओं को यह नहीं मालूम कि उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मातृभूमि कौन सी है। बाप दादाओं से उन्हें जरूर सुना होगा कि मूलतः वे कश्मीरी पंडित हैं, मगर 1990 में वे बेघर हुए थे। एक चीज तो सत्य है, कश्मीर से हम सबको निकाला गया है, पर हमारे भीतर कश्मीर को कोई भी नहीं निकाल सकता। इसी संदर्भ में हमारी बहन सरस्वती कौल बट जी ने यह कविता लिखी है। आइए मैं आपको ये कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है कब तक। चंद सांसें लेना कठिन है, चंद सांसें लेना कठिन है, इंसानियत भी शर्मसार है। वीरान चमन और शुष्क है भावना, मौन खड़े हैं पर्वत, नदियां स्थिल है, देख रहा है चुपचाप विस्तृत आकाश, थम सी गई है वितस्ता। शंकर आचार्य और कलहन की धरा आज रक्त रंजित है, सब और नरबक्षी मंडरा रहे हैं, हर कोना है बहुत ही डरावना। न जाने कब किसकी बारी है, जिंदगी यहां मौत से हारी है, मौत का तांडव जिद पर अड़ा है, हर मोड़ पर राक्षस खड़ा है, चीथड़ों में लिपटी लाशें चीख रही है, किसी की मां किसी का भाई किसी का बाप पति किसी का, मौत की बेंट चढ़ा है। कश्यप तेरी धरती पर इतना चीतकार, भगवान तुमने ही तो ये सृष्टि बनाई, हे ईश्वर तू कर कोई उपकार, रोक दे ये घातक नरसंहार, रोक दे ये घातक नरसंहार। ये कविता लिखी है बहन सरस्वती कौल भट्ट जी ने, और ये कविता खुद ही उस दर्द को बयां करती है जो हम जागते सोते अपने आसपास ही महसूस करते हैं। ये 33 वर्ष भी अब 33 दिन से ज्यादा नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कल ही हमने अपने घर को छोड़ा है। प्रभु करे किसी का घर ना छूटे, आखिर घर तो घर है। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन। सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपुरी। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है, कार्यक्रम रंगमंच की ओर में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर, सिर्फ रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz।

जाने मन क्या किसी इंसान की खामोशी में पूरी एक सदी का दर्द सुना जा सकता है? क्या किसी की आंखों का खालीपन इतना भारी हो सकता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए? नमस्कार, मैं मानव मेहरा, The Actors Eye के एपिसोड 6 में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। एक्टिंग के सफर में आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं जहां व्याकरण यानी कि ग्रामर खत्म हो जाता है और सिर्फ जज्बात बसते हैं। आज की मास्टर क्लास सिनेमा के इतिहास की उस मल्लिका के नाम है जिन्हें दुनिया ट्रेजेडी क्वीन कहती है, लेकिन जो असल में अभिनय की देवी थी, मीना कुमारी जी। और आज हम उनके जिस किरदार को समझने का प्रयास करेंगे वो है 1962 की कालजयी फिल्म साहिब, बीबी और गुलाम की छोटी बहू। एक एक्टिंग स्टूडेंट के तौर पर जब आप छोटी बहू को स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? एक अमीर जमींदारनी, एक शराबी औरत या एक मजबूर पत्नी? नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक सोने के पिंजरे में तड़पती हुई एक खूबसूरत मौत है। आइए मीना जी के अभिनय की उन परतों को यानी कि लेयर्स को खोलते हैं जो इस परफॉर्मेंस को एक टेक्स्ट बुक बना देती है। पहली मास्टर क्लास, नशे की एक्टिंग। इसे एक्टिंग की दुनिया में सबसे मुश्किल क्राफ्ट माना जाता है। अक्सर नए एक्टर्स नशे को लाउड कर देते हैं, वो बेवजह लड़खड़ाते हैं, जोर से हंसते हैं, शब्दों को चबाते हैं, लेकिन मीना जी की एक्टिंग को डिकोड कीजिए। छोटी बहू मदिरा यानी कि शराब शौक से नहीं पी रही, वो उसे जहर की तरह पी रही सिर्फ इसलिए ताकि उसका पति उस रात कोठे पर ना जा पाए। यहां मंशा फिजिकल नहीं है, इमोशनल है। मीना जी की आंखों की पुतलियों को ध्यान से देखिए। शराब पीने के बाद उनकी पलकें भारी हो जाती हैं, लेकिन वो जानबूझकर अपनी आंखें चौड़ी करके खोलने की कोशिश करती हैं। वो अपने शरीर के ढीलेपन को अपनी इच्छा शक्ति से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही। असली नशे की एक्टिंग यही है। अ ड्रंकन पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू एक्ट सोबर, यानी कि एक नशे में धुत इंसान हमेशा होश में दिखने की कोशिश करता है। नहीं, वो अपने साड़ी का पल्लू बार बार संभालती है ये जताने के लिए कि उनका खुद पर काबू है। ये जो कंट्रोल खोने और उसे वापस पाने की जद्दोजहद है, यही महान अभिनय है। दूसरी बारी जिसे हम कहते हैं प्रॉप और कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल। एक सीन है जहां छोटी बहू पूरे 16 श्रृंगार में बैठी है। भारी बनारसी साड़ी, मांग में चौड़ा सिंदूर, गले में भारी हार, लेकिन मीना जी के चलने और बैठने के अंदाज को ऑब्जर्व कीजिए। वो उन गहनों को अपनी ताकत की तरह नहीं पहनती हैं, वो उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों की तरह पहनती हैं। जब वो अपना भारी हार छूती हैं तो उनके हाथ में एक अजीब सी थकावट होती है। उनका हर जेवर बस खाली हवेली में उनकी घुटन को बढ़ा रहा है। एक एक्टर को यह सीखना चाहिए कि आपका कॉस्ट्यूम सिर्फ पहनने के लिए नहीं होता है, वो आपके किरदार की साइकोलॉजी का हिस्सा होता है। क्या आपके कपड़े आपको आजादी दे रहे हैं या आपको कैद कर रहे हैं? अब ध्यान देते हैं तीसरी लेकिन सबसे अहम बात पर, और वो है वॉइस मॉड्यूलेशन, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं आवाज का उतार चढ़ाव। मीना जी की आवाज में कुदरती तौर पर एक ट्रेजेडी थी, लेकिन छोटी बहू के किरदार में उन्होंने अपनी आवाज को गले से नहीं बल्कि अपने सीने से यानी कि चेस्ट रेजोनेंस
अपनी नाभि से निकाला है। जब वो भूतनाथ से पूछती हैं, क्या मैं सुंदर नहीं हूं भूतनाथ, इस डायलॉग में जो क्रैक है, जो गले का रुंधना है, वो तकनीकी नहीं, वो सेंस मेमोरी है। शब्द बहुत धीरे से बोले गए हैं, फुसफुसाहट की तरह, जैसे कोई अपने ही अंदर किसी से बात कर रहा। एक एक्टर को ये कला आनी चाहिए कि जब दर्द बहुत गहरा हो तो आवाज का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, आवाज की गहराई बढ़ती है। और अब वो सीन जो एक्टिंग की दुनिया का माउंट एवरेस्ट है, वो गाना याद है ना, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया। इस गाने में मीना जी की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए। एक जमींदारनी, एक खानदानी औरत जमीन पर बैठी अपने अपने पति के पैरों को कस कर पकड़ा हुआ है उसने, वो गिड़गिड़ा रही है। लेकिन ध्यान से देखिए,

तो भाई लोग, मीना कुमारी जी ने हमें सिखाया कि महान अभिनय दिमाग से नहीं होता है, वो आपकी आत्मा के उन कोनों से होता है जिन्हें आप दुनिया से छुपा कर रखते हैं। और अब भाई लोग, आज की मास्टर क्लास का होमवर्क, और यकीन मानिए ये आज तक का सबसे मुश्किल होमवर्क होने वाला है। हम इसे कहेंगे दी सोबर ड्रंक मोनोलॉग, यानी कि होश में नशे का एकालाप। अपना कैमरा ऑन कीजिए। आपको कोई एक साधारण सा पैराग्राफ पढ़ना है। मान लीजिए आप किसी को अपनी दिनचर्या बता रहे हैं या रोज आप क्या करते हैं, ये सब बता रहे हैं। लेकिन सबटेक्स ये है कि आपने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है और आप सामने वाले से ये छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप नशे में हैं। आपको लड़खड़ाना नहीं है, जबान नहीं लड़खड़ाने देनी है, सिर्फ अपनी आंखों से, अपनी पलकों के भारीपन से और अपने शब्दों को हद से ज्यादा साफ बोलने की उस एक्स्ट्रा कोशिश से ये जताना है कि आपके अंदर कितना नशा है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैमरे पर पकड़ने की कोशिश कीजिए, इसे रिकॉर्ड कीजिए और मुझे कमेंट्स में आकर जरूर बताइएगा कि क्या आप अपनी ही आंखों को धोखा दे पाए। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहें और अपनी कला की इबादत करते रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और आइकॉनिक फिल्म के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। नहीं,

0: जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, थोड़े घर के काम में हाथ बटाना भी सीख ले, के करेगी इतना पढ़ के।
1: ITI में दाखिला लूंगी और फिर एक अच्छी नौकरी करके अपने परिवार के सारे सपने पूरे करूंगी।
0: इतना आसान हो गया के?
1: माँ लगता है आपको पता नहीं कि महरी हरियाणा की ITI में दाखिले शुरू हो गए हैं, जहाँ पे 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा राज्य की 197 सरकारी और 180 प्राइवेट ITI के एक और 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। इन ITIs में 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
0: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।
2: تو شو بوزان FM 90.0 ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی ہون بوزان روزیو پنین پسندید بات
3: آپ نے ٹیون ان کیا ہے FM 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی کا آپ کی زندگی کی روانی للیشوری جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے 14th شتابدی کی کشمیری

0: संत, कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
1: नमस्कार। लल दे वाक उतय वनन उत्सव ये बहुत ही क्रांतिपूर्ण और बहुत ही परिवर्तनशील ललवाक है। ललदेच वनन गोरन उन्नम कुनई वचुम निब्राई दुपनम अंदरे अचुम सुई गौ ललिमे वाक वचुम तवे हुतुम नंगई नचुम। यानी गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसके कारण से मैं बाहर से अंदर आई और वही अंदर आना मेरे लिए एक क्रांति का सबब बन गया और इसलिए लला अब एक नग्न रूप में नाच रही है। इस वाक को समझना बहुत जरूरी है। गुरु ने ऐसा क्या शब्द कहा? हमारी संस्कृति में एक शब्द ब्रह्म है जो अपने में ही एक पूरा ब्रह्मांड हम मानते हैं और ललदेत को गुरु ने कुछ ऐसा शब्द कहा जिससे ललदेत के जीवन में बाहर और अंदर एक क्रांति खड़ी हो गई। जो लला बाहर थी वो लला अंदर चली गई और जो अंदर चली तो उसे एक नई ही दुनिया दिखाई दी। यानी वो मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जब मुड़ी तो एक क्रांति उसके अंदर घटी और यही लला कहती है तवई है तुम नंगई नसुन। यानी इसलिए वो नग्न अवस्था में नाचने लगी। ये नग्न अवस्था कपड़े उतरे हुए नग्न अवस्था नहीं, ये वो नग्न अवस्था है जहां पे हम सारे फसाद जिसके कारण से हम अंदर की दुनिया को छिपा के रखते हैं और बाहर की दुनिया में कुछ और दिखाते हैं, ये उस फसाद को तोड़ने की बात कर रही है। वो कह रही है मैंने वो सारी कंडीशन, सारे परसेप्शन, सारे बिलीफ, सारे आइडिया, सारे थॉट्स, सारे ऐसे जो जजमेंट्स उसके मन में थे जिसके कारण से एक आम आदमी दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, उसे वो सारे कंडीशंस छोड़ दिए और एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जो विचारहीन, विचारलेस, थॉटलेस स्टेट है। और उस थॉटलेस स्टेट से उसे वो परमात्मा दिखाई दिया, उसे वो शिव दिखाई दिया। कितनी गहरी बात ललदेत हमें इस वाक से कहती है। मैं नीरजा जी से कहूंगा कि तो विद्यो युह वाक पन्ने हटे तो युजन लुक बोझन कि अथ वाकस मस्त कित पच सरस्वती हैकान अस्ताम वहित।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: तो बोजन FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हूँ। बोजान रूजिव पनिन पसंदीदा बात।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी प्यारी बहनों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूँ सोनू सलारिया और हमेशा की तरह आज भी है मेरे साथ रमेश जी।
3: जी नमस्ते, और तमाम हमारे सुनने वालों को, इस कार्यक्रम के सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार
2: जी। और रमेश जी बताइए आप कैसे हैं?
3: जी बिल्कुल ठीक है, एज यूजुअल जैसे हैं वैसे ही रहते हैं
2: जी।
3: हमेशा इंसान को जिन हालात में रहे खुश रहना चाहिए
2: जी।
3: देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो परेशानी में रहना, एक तो खुशी में रहना
2: जी।
3: अगर जीना है तो आप खुशी में जिए, है ना
2: जी?
3: पल पल तो गुजारने हैं, इसलिए आप रो रो के गुजारें, परेशानी में गुजारें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कहते हैं कि जो खुशियां होती हैं बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और जो गम होते हैं वो काफी दूर तक साथ देते हैं
2: जी। हाँ, और असल जिंदगी वही है जब हम गमों में खुश रहने की कोशिश करते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे बताइए इस दुनिया में कौन परेशान नहीं है
2: जी? हाँ,
3: क्योंकि मुकम्मल तो कोई है नहीं।
2: बिल्कुल,
3: सबको सब कुछ मिलता नहीं है
2: जी। हाँ, नहीं है मिलता है।
3: और इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी इच्छाओं पे काबू पा लीजिए
2: जी। हाँ, और तभी आप जिंदगी में खुश रह सकते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि उस परमात्मा ने जिस हाल में इंसान को रखा है, जिस हाल में इंसान को रखा है उसी में आप खुश रहिए, और जो कुछ भी होता है इंसान के साथ वो उसकी अच्छाई के लिए होता है
2: जी। जी, काफी कुछ आपने अच्छी सी बातें
3: सुनाई। मुझे लगता है कि प्रवचन हो गया जी।
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं और ये जिंदगी में काम आने वाली हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने जी, और हंसते खेलते मुस्कुराते जिंदगी गुजारिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट कायम रखिए, हाँ बरकरार रखिए। मैंने देखा है कि चिनार के जो पेड़ होते हैं उनमें जब सितंबर का महीना जब होता है या अक्टूबर का महीना शुरुआती दिनों में चिनार के पत्ते जो होते हैं ना जी पीले पड़ जाते हैं
2: जी,
3: है ना जी, और फिर वो गिरने लगते हैं
2: जी। हाँ,
3: लेकिन जब हम उन चिनार के पत्तों पे चलने की कोशिश करते हैं तो एक संगीत उभर आता है
2: जी। हाँ,
3: इसलिए गाने का जिक्र हुआ, संगीत का जिक्र हुआ, तो मैं चाहूंगा कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत एज यूजुअल, अगर आपकी इजाजत हो तो एक खूबसूरत गाना है

0: बहरहाल सोनू जी, ये तो इस गाने से पहले हम कोशिश कर रहे थे कि एक शुरुआत अच्छी हो, बेहतरीन शब्दों का प्रयोग करके मैंने कोशिश की है
1: जी, और आप इस कोशिश में कामयाब भी रहे हैं।
0: और उसके बाद गाना जो था
1: बहुत प्यारा था।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमने कहा था कि चाहते इंसान की कभी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चाहते होती हैं जो पूरी होती हैं। बहरहाल आज किस टॉपिक पे आप बात करेंगे?
1: देखिए, आज हम परिवार के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज बढ़ती हुई जनसंख्या एक चिंता का विषय बन चुका है। मनुष्यों की संख्या देश में उपलब्ध साधनों की तुलना में बढ़ जाए तो देश में बेरोजगारी, निर्धनता जैसे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
0: बिल्कुल सोनू जी, देखिए गुर्बत जो है ये सबसे बड़ा कारण है हमारे भारत में बढ़ती जनसंख्या।
1: जी हाँ।
0: वो कहते ना कि एक एक जमाने में नारा हुआ करता था, हम दो हमारे दो। अब तो मुझे लगता है कि हम दो हमारा एक, इस तरह का नारा शुरू होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पूरे भारत की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 1,35,00,000 के करीब है।
1: जी हाँ, और ये बढ़ती ही जा रही
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: देखिए, परिवार हर समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर परिवार सुखी होंगे तो समाज में सुख शांति होगी, और परिवार तभी सुखी रह सकता है अगर परिवार छोटा है।
0: बिल्कुल, छोटा परिवार सुखी परिवार।
1: जी हाँ, परिवार में एक या दो बच्चे हो
0: जी,
1: ताकि माता पिता बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा का प्रबंध अच्छे से कर सके।
0: बिल्कुल सही बताया आपने।
1: देखिए, परिवार में अधिक बच्चे होने से माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा उनका अच्छे से पालन पोषण तो नहीं कर पाते हैं, और ऐसी फैमिलीज में जहां बच्चे ज्यादा होते हैं बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिससे उन्हें अनेक प्रकार के रोग घेरते हैं।
0: जी बिल्कुल, भारत सरकार या हेल्थ महकमा जो है, सेहत जो महकमा है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे हम अपने परिवार को छोटा रख सकते हैं। और पढ़े लिखे सभी हैं आजकल, और चाहिए कि जितना छोटा परिवार हो उतना सुखी परिवार रहता है, और परिवार छोटा हो तो ज्यादा बेहतर है,
1: और हम अपनी फैमिली को पूरी सुख सुविधाएं आसानी से दे सकते हैं।
0: बिल्कुल। और भारत की जो गुर्बत है या दिन ब दिन महंगाई या गरीबी के कारण जब हम पूरी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं तो उसका कारण यही है कि आपके घर में 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं तो उनका पालन पोषण नहीं हो पाता है ठीक ढंग से। तो जाहिर है कि छोटा परिवार सुखी परिवार
1: होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अरे आजकल तो काफी ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे आप आसानी से अपने परिवार को छोटा रख सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। मैंने देखा दूरदराज के यहाँ जितने भी गांव हैं उनमें अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि वहां पे मैं एक जगह पे गया तो मैंने देखा वहां उस परिवार में 9 बच्चे और मैं हैरान हो गया। तो जाहिर है कि इस तरह की अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना है और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं।
1: जी शुक्रिया।
0: और चलिए हम आपको एक गाना सुनवाते हैं।
1: जी सुनाइए।

0: तो हम अक्सर कहते रहते हैं, और इन बातों पर जैसे मैंने अभी इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे ना, छोटा परिवार सुखी परिवार बहुत जरूरी है, तभी हमारा भारत या हमारा एरिया या हमारा गांव खुशहाली की तरफ गामजन होगा जब आपका परिवार छोटा होगा, आपके घर में सुख
1: और शांति होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी।
1: अब आगे बढ़े।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: देखिए अब हम सेहत से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। देखिए रमेश जी, आजकल हम देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मोटापा से ग्रस्त हैं और
0: हाँ
1: मोटापे को कम करना चाहते हैं। मोटापा एक ऐसी समस्या है जो अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आता है। आप चाहे तो कुछ बातों पर अमल कर कुछ ही दिनों में अपना साइज सही कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, मोटापा जो है वो हर बीमारी की जड़ है ना जी। आमतौर पे कहा जाता है कि इंसान को ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं उतना होना चाहिए कि हवा का झोंका आए और आपको एक जगह से दूसरी जगह
1: जी
0: आसानी से
1: जी
0: पहुंचा दे जी।
1: मतलब आपकी सेहत जरूरत के अनुसार होनी
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: बिल्कुल नॉर्मल
1: जी नॉर्मल होनी चाहिए। देखिए खान पान में आप प्रोटीन युक्त आहार जैसे दाल, हरी सब्जियां और डेयरी उत्पादों को प्रमुखता दें। अपने आहार में आलू और चावल के स्थान पर आप सलाद और फलों को प्राथमिकता दें।
0: जी। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें ज्यादा प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे
1: जी
0: आलू की फसल है
1: इसमें वसा ज्यादा
0: जी।
1: होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इससे मोटापा होता है। या आमतौर पे राजमा वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं, दालें हैं, तो आप जब खाते हैं तो मोटापा खुद ब खुद जमा हो जाता है आपके शरीर में।
1: और कोशिश करें हर हाल में रात का खाना सोने से 2.5-3 घंटे पहले कर लें। खाना खाने के बाद कुछ देर अवश्य टहलें, इससे भोजन आसानी से पच जाता है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, सही बताया आपने। आमतौर पे लोग लेट खाना खाते हैं, डिनर करते हैं और उसके बाद एकदम से सो जाते हैं, तो जाहिर है कि पाचन शक्ति में थोड़ी सी समस्या पैदा होती है।
1: और मौसम कोई भी हो, हर रोज 7-8 गिलास पानी अवश्य पिए। एक बात और याद रखें कि खाना खाते समय कम पानी पिए और नियमित व्यायाम करें। जहां तक संभव हो लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग करें। सुबह शाम अवश्य टहलें।
0: पहले जमाने में जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको हम आज देखते हैं, उनका शरीर बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त रहता था, क्योंकि वो फिजिकल जो जिस्मानी काम होते थे वो ज्यादा करते थे। पैदल चलना, खेती बाड़ी करना या बाकी जो जिससे जिस्मानी कसरत होती थी।
1: देखिए
0: लेकिन
1: वो
0: अब तो जमाने के साथ साथ काफी ऐसी चीजें आई हैं कि आप कमरे में बैठे हैं, बेडरूम में बैठे हैं, आपके सामने टेलीविजन लगा है, आपके हाथ में रिमोट है, यानी अगर आपको चैनल का चेंज करना है तो रिमोट के जरिए आप चैनल चेंज करते हैं, तो इतनी भी आपको उठने की जरूरत नहीं पड़ती है
1: नहीं
0: उस
1: होती।
0: जगह से वहां टेलीविजन के पास जाने के लिए।
1: जी हाँ,
0: तो
1: और
0: जाहिर है कि जिस्मानी कसरत बहुत जरूरी है।
1: देखिए जैसे आपने पुराने लोगों की बात की तो वो अच्छा खाते थे और अच्छा काम करते थे, इसलिए आज हम उनको तंदुरुस्त देख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा चलने की कोशिश करिए, लंबे वॉक पे जाइए, तकरीबन 4-5 किलोमीटर अगर आप डेली रूटीन में जाएंगे तो जाहिर है कि आपका शरीर एक जगह पे टिका रहेगा, है ना जी।
1: बिल्कुल।
0: तो फिलहाल बहुत अच्छी बात है। मोटापा आमतौर पे पाया जाता है और लगभग अगर 10 लोग आपको मिलेंगे तो 8 लोगों में मोटापा होगा।
1: तो इन बातों का ध्यान रखिए और फिट रहिए।
0: बिल्कुल, और ये तो मुफ्त इलाज है जी, आप सैर को जाइए, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, और जैसे सोनू जी ने बताया कि पानी खूब पी लीजिए,
1: जी
0: है ना जी।
1: जी
0: तो अब हाँ जी,
1: प्यारा
0: हाँ
1: सा गाना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।

0: बहरहाल खाने पीने की बात चली है, इससे पहले आपने खाने पीने की बात की थी कि किस तरह का खान पान होना चाहिए ताकि आप मोटापे को कंट्रोल में रखें। आज क्या रेसिपी है, क्या खिलाएंगे आप?
1: जी, आज मैं मसालेदार पॉपकॉर्न बनाना सिखाऊंगी। देखिए, पॉपकॉर्न तो वैसे हर कोई बहुत पसंद करता है, लेकिन कुछ चटपटा बनाने के लिए मैं कुछ इस तरह से बता रही हूँ।
0: पॉपकॉर्न क्या होते हैं जी? अंग्रेजी में का शब्द है, मुझे लगता है वो मक्की की।
1: देखिए, इसे बनाने के लिए सामग्री कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमें 1 कप मकई के दाने चाहिए, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच आप चाट मसाला ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस।
0: जी बिल्कुल, आपका मोबाइल ऑन था तो इसलिए वो आवाज भी आ रही थी। उसके
1: जी,
0: बाद क्या करना पड़ेगा?
1: अब इसे बनाना होगा। विधि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले एक गहरे नॉनस्टिक पैन को गैस पर रखकर आप गर्म करें। 1 बाउल में मकई के दाने रखें और उसमें ऑलिव ऑयल डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब उन्हें गर्म पैन में डालें, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालें और अच्छी तरह मिला लें। पैन को ढक दें और मकई के दानों को फूटने दें। जब मकई के सब दाने फूट जाएं तो इसमें चाट मसाला और नींबू का रस छिड़के। अब इन्हें अच्छी तरह टॉस कर लें और तुरंत गर्म गर्म परोसें और
0: जी
1: मसालेदार
0: बिल्कुल,
1: पॉपकॉर्न का मजा लें।
0: आपकी खास बात ये रहती है जब आप ये रेसिपी बताते हैं तो उन जो हमारी ये सारी चीजें घरों में उपलब्ध रहती हैं, तो जिस वजह से हर कोई ये बना सकता है ना जी?
1: जी बिल्कुल, और ये चीजें बहुत आसानी से बन भी जाते हैं।
0: जी, बच्चों में ये चीजें ज्यादा, वो इसके बड़े शौकीन रहते हैं,
1: और
0: बड़े
1: आजकल
0: बड़े
1: बड़े
0: भी।
1: भी
0: जी
1: पसंद करते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आमतौर पे जब आप थिएटर जाते हैं फिल्म देखने, आजकल तो वैसे कम लोग देखते हैं फिल्में थिएटरों में, लेकिन वहां पे इन चीजों का इनको इस्तेमाल में लाया जाता है, या आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो वहां भी हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं इन चीजों।
1: तो कुछ चटपटा खाने को मन करता है तो इस तरह आप बनाकर खा सकते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मुझे लगता है कि
1: वक्त हो चला
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल, हमारे इस प्रोग्राम का समय मुकम्मल हुआ चाहता है। मैं चाहूंगा अपने तमाम सुनने वालों से इजाजत, और आपको इस गाने के साथ मैं छोड़ देता हूँ। नमस्कार।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: पेश है एक खास कार्यक्रम मोहम्मद रफी पर, प्रस्तुत करेंगे रमेश मराठा।
3: हजारों साल नरगिस अपनी बीनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदबर पैदा। ये आवाज सुन रहे हैं आप, जरा पहचानिए तो, ये आवाज आज तलक आपके कानों में रस घोलती आ रही है, आपके दिलों को करार, रूहों को सुकून पहुंचाती आ रही है। ये सदाबहार आवाज किसी तारुफ तारीफ की मोहताज नहीं है, ये आवाज अपनी मिसाल आप है। गर्ज बेमिसाल है, लाजवाब है, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और।

मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 को गांव सुल्तान सिंह कोटला अमृतसर में हुआ है। दोस्तों, रफी का आगाज तब हुआ जब केएल सहगल, मुकेश किशोर कुमार, तलत महमूद और हेमंत कुमार अरूज पर थे। 6 साल की उम्र से ही उनमें गाने की सलाहियतें नमूदार हुई। तरबियत हासिल करने के लिए आपने लाहौर का रुख किया। लाहौर में आपने अपनी तरबियत बड़े गुलाम अली खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और अब्दुल वहीद खान साहब से हासिल की। लाहौर में ही 16 साल की उम्र में आपने संगीतकार श्याम सुंदर की पंजाबी फिल्म गुल बलोच में बहसती गुलकार मंजर आम पे आई।

बॉम्बे फिल्म नगरी के एक निर्माता नजीर ने सन 1944 में उनकी आवाज सुनी और फिल्म गांव की गोरी में रफी साहब को गाने की दावत दी। उसके बाद मौसीकार नौशाद अली ने फिल्म पहले आप में आपको एक कोरस में पेश किया।

1947 में फिरोज निजामी ने फिल्म जिगनू में मलिके तरन्नुम नूर जहां के साथ आपको गाने का मौका फराहम किया। उसके बाद ये गुलूकार पीछे न देखते हुए आगे की तरफ बढ़ता गया, कहता गया, मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत आगे।

0: सन 1948 में फिल्म प्यार की जीत का यह गीत एक दिल के टुकड़े हजार हुए मकबूल हुआ। फिल्म बड़ी बहन का गीत मोहब्बत के धोखे में कोई न आए, मौसिकी के शायकीन महफिल की जीनत बनता गया।
1: फलक से तोड़ कर देखो

इसके बाद मोहम्मद रफी के पास फिल्मों की एक लंबी कतार लगी। जैसे मेला, शहीद, सगाई, दुलारी, दीदार, दिल लगी और बरसात, ये सिलसिला सन 1950 तक जारी रहा।

सन 1953 में जब फिल्म बेजू बावरा रिलीज हुई तो रफी की गाय हुई दो भजनों ने कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। इस तरह से यह बात सिद्ध हुई कि रफी साहब जात पात मजहब और मिल्लत की बंदिशों से ऊपर उठकर फन मौसीकी की खिदमत

कुछ गीत रफी ने इस तरह से गाए जिनमें उम्र की कोई बंदिश नहीं थी, जैसे तस्वीर बनाता हूं फिल्म दीवाना से। बड़ी देर भाई फिल्म बसंत बहार से, ऐसे तो न देखो फिल्म तीन देवियां से, सुहानी रात ढल चुकी फिल्म दुलारी से, मन मोरा बावरा फिल्म रागनी से, न किसी की आंख का नूर हूं फिल्म लाल किला से, जो बात तुझ में है फिल्म ताजमहल से, रोशन तुम्ही से दुनिया फिल्म पारसमनी से, फिर वो भूली सी याद फिल्म बेगाना से।

रफी साहब में एक खास बात यह भी थी कि वो अपनी आवाज को किसी भी सांचे में डालने की, किसी भी रस में पेश करने की सलाहियत रखते थे। खामो शहनशाही जज्बात दिलीप कुमार हो या मस्ताना देव आनंद, उछलता कूदता शम्मी कपूर हो या पारंपरिक भक्ति रस में डूबा हुआ भारत भूषण, हास्य रस में नहाया हुआ जॉनी वॉकर या महमूद हो, गरज यह है कि रफी ये तमाम सलाहियतें रखता था।

ये सही है कि मोहम्मद रफी आज नहीं है, लेकिन उसकी आवाज आज भी कई संगीत प्रेमियों की जीने का सहारा बन चुकी है। कई नए कलाकारों के लिए मशले राह साबित हुए हैं और उन्होंने रफी साहब के अंदाज को अपना कर अपना लक्ष्य तय किया है।

0: सन 1971 में रफी साहब गायकी की दुनिया में सरफिरिस्त रहे और इसी साल आप हज पर चले गए।
1: खुदा अपने बलियों से होता है राजी।
0: हज के फराइज अंजाम देने के बाद मौसीकी की दुनिया को अलविदा किया और आप अपने फर्जंद के साथ लंदन में कयाम करने लगे। इस फनकार की गैर हाजिरी को सामीन ने बर्दाश्त नहीं किया और रफी को गायकी की दुनिया में वापस लाने में कामयाबी हासिल की।

मोहम्मद रफी ने चंद एक ममालिक को छोड़ सारी दुनिया का दौरा किया। रफी न सिर्फ एक महान गायक कलाकार ही थे बल्कि अजीम शान शख्सियत के मालिक भी थे। वो सादा नरम तबीयत और खुदा का खौफ रखने वाले इंसान थे। वो

रफी साहब ने 36 सालों में तकरीबन 26,000 मुख्तलिफ हिंदुस्तानी भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। आपको 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और आपने पद्मश्री एजाज भी हासिल किया।

महफिल चाहे तंज़ मिज़ाह की हो या दर्द वालम की, चाहे इश्क आशिकी या सूफियाना महफिल, रफी साहब हर महफिल को अपनी मधुर आवाज से सरशार करते रहे। रफी साहब जैसे कलाकार एक ही बार हयात पाते हैं।

0: रफी ने अपने जमाने के लगभग सभी को सिंगर्स के साथ काम किया। लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, शमशाद बेगम, सुरैया, मीनू परशोत्तम और सुलक्षणा पंडित।
1: तुम अकेले तो कभी बाग में जाए।
0: और ये सभी गाने मकबूल भी।

31 जुलाई सन 1980 को फनी मौसीकी के अंबर से एक चमकता सितारा वक्त की गर्दिश में न जाने कहां खो गया, जिसे आज भी और सालों साल तक परिस्तारों की निगाहें तलाशती रहेंगी।

0: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। हम हर मर्तबा बात करते हैं किसी भी एक गोल्डन एरा मूवी के बारे में और जानते हैं उनके अनकहे किस्से और सुनते हैं उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1971 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जो कि गुलशन नंदा जी की एक नावल पर आधारित थी और इस फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंत। लीड रोल में थे उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, आशा पारेख और उस समय के जाने माने विलन प्रेम चोपड़ा। और कहा जाता है इसी फिल्म में प्रेम चोपड़ा विलन के रूप में हिंदी सिनेमा में उभरे थे और ये फिल्म थी कटी पतंग। इस फिल्म के कंपोजर थे आरडी बर्मन साहब और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के किस्से जारी रहेंगे, फिलहाल सुनाता हूँ एक गीत किशोर कुमार जी की आवाज में।

गीत तो था बहुत सुहाना और हम बात कर रहे हैं फिल्म कटी पतंग की, जिसे रिलीज हुए 52 साल पूरे हो चुके हैं। हम सब ने इस फिल्म की लीड अदाकारा के रूप में आशा पारेख जी को देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं शक्ति सामंत जो इस फिल्म के निर्देशक थे, उनकी पहली पसंद आशा पारेख नहीं थी और इससे पहले राजेश खन्ना जी के साथ आशा पारेख की बहारों के सपने फिल्म आई थी जो कि इतनी नहीं चल पाई। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आशा पारेख जी के पास यह रोल कैसे आया और कैसे उन्होंने इसे बाखूबी निभाया, ये भी आपको बताएंगे। इस किस्से को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। उससे पहले सुनाता हूँ आपको मोहब्बत भरा गीत।

उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। अब आते हैं हमारे फिल्मी किस्से पर। हम बात कर रहे थे किस तरह यह रोल आशा पारेख जी को मिला। कहा जाता है उस समय शक्ति सामंत जी की पहली पसंद शर्मिला टैगोर थी और सबसे पहले यह रोल उन्हें ही ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय वह माँ बनने वाली थी जिस वजह से उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया था। यह फिल्म उस समय के संवेदनशील विषय पर बनी थी जो था विधवा विवाह, और जब आशा पारेख जी ने यह रोल सुना तो इस वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए झट से हाँ कर दी। और इस तरह हमें मिली कटी पतंग की मधु। और भी किस्से बाकी हैं, उससे पहले सुनिए एक प्यारा सा गीत और लौटकर बताएंगे इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का किस्सा।

गाना हुआ खत्म, अब आप लौट आइए उन फिल्मी किस्सों की तरफ। अगला किस्सा है इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का। जैसे कि हम बात कर रहे थे, यह फिल्म बहुत संवेदनशील विषय पर बनी थी और राजेश खन्ना तब तक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने एक महिला प्रधान फिल्म में काम करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। इस फिल्म का ज्यादातर दारोमदार आशा पारेख जी पर था, लेकिन फिल्म के सारे हिट गाने राजेश खन्ना जी पर फिल्माए गए थे। परंतु फिल्म का शीर्षक गीत, जो कि लता जी ने गाया है, वह आशा जी पर फिल्माया गया था। आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है, जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो मेरे दिल में हुक सी उठती है। आइए अब आपको यह

अब हम लौट आए हैं कटी पतंग से जुड़ा एक और किस्सा लेकर। इस फिल्म के ना केवल गाने मशहूर हुए बल्कि इस फिल्म ने उस सदी के खलनायक और खलनायिका को भी पहचान दी और लोगों के बीच मशहूर भी किया, जिसके बाद उन्होंने खलनायक के रूप में कई किरदार निभाए। और साथ ही साथ इस फिल्म के एक गाने ने बिंदु जी को रातों रात हिंदी सिनेमा की आइटम गर्ल बना दिया। अब सुनाने जा रहा हूँ आपको वही गाना आशा भोसले जी की आवाज में।

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, मीना, अंजू, मंजू या

0: जी हाँ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भारत सोपोरी और इस समय लाइव हूँ फेसबुक पेज रेडियो विदस्ता का जो है उस पर, और आप सभी
1: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर
0: नमस्कार।
1: फिल्मी किस्से एपिसोड 2
0: शुक्रवार है।
1: उम्मीद करता हूँ किस्से सुनकर
0: साढ़े ग्यारह बजे
1: अच्छा लगा
0: आप हमारे साथ जुड़े हैं
1: और इस फिल्म के बारे
0: लाइव शो में
1: नई जानकारी मिली होगी।
0: नाम है
1: अब बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के
0: जीवन
1: अंत
0: का आधार का एपिसोड
1: सुनाते हैं।
0: आज हम
1: एक और
0: लेके आ रहे हैं
1: जो की जुड़ा है
0: 11 बजे
1: सचिन देव बर्मन जी से,
0: और
1: कहा जाता है राजेश खन्ना जी की इससे पहले बनी फिल्म आराधना में।
0: और उम्मीद ये है कि आपको मेरी आवाज बहुत ही सही तरीके से मिल रही है, और आप सभी को मैं सचेत करना चाहता हूं कि आज 11:30 बजे हम इस शो का चौथा शो लेके आ रहे हैं आपके लिए, और जिसमें हम बात करते हैं हमारे धर्म ग्रंथ गीता के बारे में, गीता के उपदेश के बारे में, गीता हमारे जीवन में किस तरीके से सहायक हो सकती है, और इसके लिए हम अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को आमंत्रित करते हैं इस शो में। हमारे साथ आज के इस शो में खास तौर पर हमारे जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जुड़ रहे हैं, और आज का हमारा शो ये अंतर्राष्ट्रीय शो भी होगा। हमारे साथ आज जुड़ेंगे जापान से डॉक्टर राधा मध्यस्था। डॉक्टर राधा मध्यस्था बहुत पढ़ी लिखी एक औरत है, लेडी है, और जो अपने काम में व्यस्त है, असिस्टेंट प्रोफेसर है मेडिसिन की, जापान में मियाज़ाकी एक जगह है वहां पर, साथ में वो गीता परिवार की अध्यक्ष है, यानी प्रेसिडेंट है जापान के गीता परिवार की। वो हमारे साथ आज जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि गीता परिवार का जो विस्तार हुआ है वो तो हमारे देश में हो ही रहा है, हो चल रहा है अलग अलग समय पर। GeetaLearn.com के माध्यम से अलग अलग लोगों को जोड़ा जाता है, गीता के बारे में सिखाया जाता है हम गीता को कैसे पढ़ें, और साथ में अब इसका विस्तार हमारे विश्व के अलग देशों में भी हो रहा है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देश जापान है। जापान में डॉक्टर राधा मध्यस्था ने जो कोशिश की है, जो मेहनत की है, तो हमारी कोशिश है कि हम उस तरीके से उनसे बात करेंगे, और बात करने के साथ साथ हम ये जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जापान में लोगों को प्रेरित किया और गीता का जो उपदेश है उसको लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो वो हमारे शो में आज होंगे, 11:30 से ये शो शुरू होगा। मैं केवल और केवल आप सभी को जानकारी देने आया हूं कि आप जरूर अपना काम कंप्लीट करके जुड़िए। 11:30 बजे हमें गीता उपदेश के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे साथ मीनाक्षी दीदी होंगी जो उत्तरांचल की प्रभारी है गीता परिवार की, और साथ में भास्कर दास जी भी होंगे जो जम्मू कश्मीर के संयोजक है गीता परिवार के, और भी बहुत सारी बातें होंगी। और कोशिश करेंगे कि आज का जो शो है ये बाइलिंगुअल होगा, ये हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा, क्योंकि जो हमारे आज गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर राधा मध्यस्था, ये कर्नाटका से है, ये हिंदी बोलती हैं बट थोड़ा सा कम बोलती हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आज का शो अंग्रेजी में और साथ साथ में हिंदी में भी हो, और कोशिश करेंगे कि आप लोग जुड़े हमारे इस शो में 11:30 बजे जो लाइव होगा हमारे फेसबुक पेज पर, साथ ही ये लाइव होगा सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता पर। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को देखेंगे, सुनेंगे, और इस में जितनी भी बातें होंगी उनको ग्रहण करेंगे, और हम आशा करते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए। रेडियो वितस्ता की ये कोशिश हमेशा रही है और आगे भी रहेगी, और मैं इसलिए आपको जानकारी देने कुछ समय पहले आया। अभी इस समय 10:54 हुए हैं और 11:30 बजे ये शो शुरू होगा, जिसमें हमारे जो मेहमान है वो जापान से जुड़ेंगे और हमारे जम्मू से जुड़ेंगे, और साथ में उत्तरांचल के प्रभारी मीनाक्षी दीदी भी जुड़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगर आशु भैया के पास टाइम होगा वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो टिकर पर इस समय चल रहा है, और साथ में आप अगर किसी और देश से हमें कॉल करेंगे तो आपको व्हाट्सएप कॉल करना होगा और उसके साथ +91 लगाना होगा जो इस समय स्टिकर पर चल रहा है। हमारा नंबर है +917056413010। उम्मीद करते हैं कि 11:30 बजे आप हमसे जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जो आपके सवाल होंगे उन सवालों के जवाब भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं आपसे लेता हूं विदा और मिलता हूं आपसे 11:30 बजे आप सभी के साथ, आज के मेहमानों के साथ। तब तक आप खुश रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, रिकॉर्ड एडिट और प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, लेखक एवं निर्देशन सेजल पुंज। ये थी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विद अस्था की

0: जरूरत है।
1: नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विविधता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विविधता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विविधता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विविधता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विविधता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सभी को जय श्री कृष्णा। मैं भारत सोपोरी आप सभी के लिए आज यहां पर हूं लाइव रेडियो विदस्ता के फेसबुक पेज पर। और आज हम लेके आए हैं कार्यक्रम भगवद गीता जीवन का आधार का एपिसोड 4। आज का शो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हम सब के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हमारा ये शो इंटरनेशनल शो होने जा रहा है। आज ये शो अंतर्राष्ट्रीय शो होने जा रहा है। कार्यक्रम भगवद गीता जीवन का आधार हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं। जो हमारा धर्म ग्रंथ गीता जी का उपदेश है वो हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, और हम सब का प्रयत्न होना चाहिए कि हम इस उपदेश को समझें। ये हमारी जिंदगी में कितना लाभदायक है, ये हमारी जिंदगी में कितना सटीक है, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता से। ये शो इस समय लाइव है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता से, और साथ में ये लाइव है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर भी। यानी हमारे अंबाला की श्रोता इसको इस समय लाइव सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक पर पूरे विश्व में इसको देख रहे हैं और साथ में रेडियो पर सुन भी रहे हैं। हमारे लिंक्स जो रेडियो के हैं वो विश्व भर कहीं पर भी सुन सकते हैं। और आज का हमारा ये शो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये बाइलिंगुअल होने जा रहा है। हम इस शो में हिंदी में भी बात करेंगे और साथ में अंग्रेजी में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर है, जो मेहमान है आज के, उनका परिचय देता हूं। और परिचय देने से पहले हम आज के मेहमान का स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। तो मैं आज स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ मियाज़ाकी जापान से जुड़ी हैं डॉक्टर राधा मध्यस्थता। इनके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दूं, और डॉक्टर राधा मध्यस्थता से जब हम बात करेंगे हम इनसे अंग्रेजी में बात करेंगे। ये भी कोशिश करेंगे कि जहां इनको सही लगे वहां पर ये हमारे साथ हिंदी में भी बात करेंगे। और साथ में स्वागत करूंगा मैं भास्कर दास जी का, जो जम्मू कश्मीर गीता परिवार के संयोजक है। सबसे पहले मैं जय श्री कृष्णा, पहले मैं जानकारी देना चाहूंगा आज के हमारे मेहमान के बारे में जो बहुत ही जरूरी है, और उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर राधा मध्यस्थता जी से। जय श्री कृष्णा एंड वेरी वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ भगवद गीता जीवन का आधार। टुडे वी आर ऑनर टू हैव ए ट्रूली डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ज्वाइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम जापान, डॉक्टर राधा मध्यस्थता। Originally from Karnataka, Dr. Madhyastha has been residing in Miyazaki, Japan for past 28 years, holding a PhD in zoology from Madras University and PhD in medicine from University of Miyazaki. She serves as an assistant professor in Department of Cardiovascular Physiology at the Faculty of Medicine, University of Miyazaki. Beyond her remarkable academic and medical career, she serves as president of Gita Parivar in Japan and lead of International Affairs Department. Today we explore how the wisdom of Bhagavad Gita transcends borders, languages and cultures. Once again, I welcome you, Dr. Radha Madhyastha.
1: जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम, ग्रीटिंग्स टू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच भारत जी फॉर इनवाइटिंग, गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू भास्कर भैया एंड थैंक यू गीता परिवार। जय श्री कृष्णा, थैंक यू गीता परिवार फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई विल ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी में बात करने की प्रयत्न करूंगी, बट मेरी आप सभी सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरी टूटी फूटी हिंदी को एक्सक्यूज करें. आई विल ट्राई आई लेवल बेस्ट टू यूज हिंदी एज मच एज पॉसिबल एंड आई एम मोर कम्फर्टेबल इन इंग्लिश एंड जैपनीज देन इन हिंदी.
0: यस राधा दीदी, आपका पुनः स्वागत करता हूं और हमें बहुत खुशी है कि आज आपकी वजह से हमारा जो ये शो है ये अंतर्राष्ट्रीय शो हुआ, इंटरनेशनल शो हो गया. बिकॉज वी हैव क्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ आर कंट्री एंड वी आर कनेक्टेड टू जापान. हियर द टाइम इज मोर देन 11:30 एंड आई होप इन जापान इट इज 3:05 एंड let me welcome you in Japanese. I have tried to learn a word. Banugumei yokoso.
1: Arigatou gozaimasu.
0: Thank you so much. Bhaskaram ji, aap kaise hain aur Jammu Kashmir ke halaat aaj ke date mein Geeta parivar ke sandarbh mein kaise hain aur hum beech beech mein baat karte rahenge. Mujhe umeed hai ki Meenakshi didi bhi agar unke paas samay hua wo judenge. Maine Ashu bhaiya ko bhi request kiya hai ki kuch samay ke liye wo hame jude hamare saath taki hame protsahit bhi kare aur hamare saath जो हमारा ये कार्यक्रम है इसके साथ बने रहें. हमारे साथ हमारी श्रोता भी जुड़ने लगे. वी हैव ज्योति कोल, शी इज सेइंग जय श्री कृष्णा एंड वी हैव रत्नाधर, शी इज सेइंग जय श्री कृष्णा. एंड राधा दीदी, आपसे बात हम करेंगे, आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर भी जानने की कोशिश करा. आई वुड ट्राई टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू यू सो दैट आवर लिसनर्स कैन नो हाउ गीता परिवार इज एक्सपेंडिंग इन अदर कंट्रीज बियॉन्ड आर इंडिया, बियॉन्ड आर भारत. और आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड आई एम सो अ लिटिल बिट नर्वस ऑल्सो टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम राधा दीदी बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स. यू आर एकेडमिशियन, यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर. हाउ आई कैन आस्क द क्वेश्चन, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज माई ड्यूटी ऑन द शो टू कनेक्ट ऑल द लिसनर्स ऑफ आर रेडियो कम्युनिटी रेडियो विच इज वर्किंग इन अम्बाला हरियाणा. And you are live on our community radio as well and live on our Facebook page too. Starting from your side, please.
1: Yeah. So, Bharatji, let me tell you, I am not here as a professor or as academician. I am here as a Gita sadhak. I am not an expert in Gita also, but what I am learning through Gita Parivar, taking baby steps in Gita journey, I would like to it is my honor and pleasure to share with everyone. So I'm just a sadhak. So treat me just as a sadhak so you will not be nervous.
0: You have removed my nervousness and I hope this show will go very nicely today. The images on the back of your image encourages us to do more and more good for the community, for the nation, and the people who are residing out of our country. They also love India and taking pledge to make India the number one country in the world. And as far as our Geeta ji is concerned, let's go on that subject. And the most important thing टू आर लिसनर्स आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे देम कि आज का जो ये शो है, आज का शो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम जानेंगे कि जो गीता परिवार का विस्तार हमारे देश में हुआ है, इतना ही जरूरी है कि इस गीता परिवार का विस्तार हमारे विश्व के अन्य देशों में भी हो. और इसका एक एग्जाम्पल है जापान. जापान की जिम्मेदारी डॉक्टर राधा मदस्ताई, जिनको हम राधा दीदी के नाम से पुकारेंगे, उनसे हम जानेंगे उन्होंने कैसे ये सोच तैयार की और वहां के लोगों के साथ इसके बारे में उन्होंने बात की. जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो हम जानेंगे आज के हमारे गेस्ट स्पीकर से. एंड भास्कर जी, आप प्लीज अपना फोन म्यूट करिएगा और आप ध्यान रखिएगा कि आज का शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपके साथ भी जुड़े सवाल मेरे पास हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, बट लेट मी स्टार्ट विद राधा दीदी. राधा दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवद गीता. The question for you from my side is, again, welcome to the show. Dr. Radha, to begin with, in today's fast-paced world, why do you believe the Bhagavad Gita remains so essential and relevant for every individual, regardless of their background and profession?
1: Because it is a fast-paced world, we need Gita for us. We are standing on Dharma Kshetre, Kuru Kshetre. Whether you are an Indian or Japanese or American, Australian, African, doesn't matter. All of us, every moment of our life, we are standing on the Kurukshetra and fighting against the enemies. Who are our enemies? Ichcha, Ahankar, Gamand, Krodh, Kaam, Lalach. All these are our enemies. Uncontrolled emotions are our enemies, and we need to fight against them. And Gita ji takes us by hand and teaches us how to handle these, to win over these emotions, our enemies, and make our life a better thing. So we need to have Gita because of this current state of life. Like it says, Banduratma atmanastasya yenatma ivatmana jitaha anatmanastu shatrutve vartetat maiva shatruvat. The mind is the best friend of one who has conquered it, and the worst enemy for who has not conquered it. So our mind, we need to control our mind, our control our emotions, and Gita helps us to do that. And it also warns us, Trividan Naraka Siedvan. There are three types of gateways for Narak. What are they? Kama, Krodha, Lobha. So we need to Tyajet. Tasma De Tatrayam Tyajet. We need to shun them. Our desire, matlab, it is that lust, over desire, anger and greed. We need to control them, shun them, so that we can get peace. And not only that, Gita is also having a very important psychological lesson. It teaches us psychology also. Like in psychological analysis, we have something called, like when we are talking about emotions, to evaluate the emotional level of people, we have something called circumplex model of affect. So it evaluates the person's emotional and outcome of that emotion. So there are 3-4 stages.

0: especially on our community radio, and we are working for the community of Ambala, which is a main district of Ambala in Haryana state. So it is our responsibility to show the path, show the good path to the people around us. Thank you so much, Radha Didi, for being with us in the show. Bhaskar ji, aapse bhi main kuch janna chahunga. Hamare saath judi thi abhi Meenakshi Didi, par wo abhi disconnect ho gayi. Meenakshi Didi, agar aap hame sun rahe hain, to aap zarur dobara judiye hamari show mein. Hame acha lagega aapse bhi baat karna. Bhaskar ji, aapse main janna chahunga ki jaise abhi Radha Didi ne kaha sadak. उन्होंने कहा कि आज मैं एक साधक और सेवक हूं गीता परिवार की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा साधक और सेवा में क्या अंतर है, आप साधक हैं या सेवक, कृपया विस्तार से बताएं। जी भास्कर जी।
1: जी धन्यवाद भारत भैया एंड धन्यवाद राधा दीदी, हम एक स्टेज पे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा, वसुदेव वसुतं देवं कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। और मैं स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के चरणों में नमन करके आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो क्या है गीता परिवार में जो हम कार्य कर लेते हैं, खासकर ज्वाइन गीता डॉट कॉम में हम गीता का रिसाइटेशन सिखाते हैं साधकों को। साधकों मीन्स जो भी गीता परिवार से रजिस्ट्रेशन कर लेता है, जो गीता को सीखने के लिए, उसको हम साधक बोल लेते हैं। साधक जब बन जाते हैं तो गीता परिवार की पद्धति ऐसी है कि सिखाते सिखाते गीता का उच्चारण सिखाते सिखाते ऐसे आचरण बन जाता है, ऐसे हर साधक का ऐसे व्यवस्था हो जाती है कि उसका मन कर लेता है कि मैं अपने गीता परिवार की सेवा करूं। तो सेवा कैसे करनी है, गीता का प्रचार करना है, गीता की बात जो है जन जन तक पहुंचाना है, उसके बारे में जो अच्छी बातें हैं वो सबसे पूछा के सबको सेवक सॉरी साधक बनाने का जिम्मा में रहता है। पर साधक बनाते बनाते परिवार में ऐसी पद्धति चल रही है कि हम सब लोग ऐसा मन में सबके विचार आ जाता है कि हम सेवा करें अपने समाज की, अपने देश की, तो उनको हम सेवक बोल लेते हैं। तो एक बार आपके गीता परिवार में सेवक साधक बन गए तो नेचुरली नेक्स्ट स्टेप आपका साधक की सेवक ही हो जाता है। क्योंकि सब लोगों का मन ऐसे करता है कि हम गीता परिवार को या अपने भगवद गीता की सेवा कर लें।
0: इसके साथ ही जुड़ा मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, साधक और सेवा, अब देखिए कितने सरल शब्द है ये दोनों, इन शब्दों में ही विनम्रता है। जब भी हम धर्म का कोई कार्य करते हैं, जब भी हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं, तो हमेशा ये माना जाता है कि अहंकार उसमें नहीं होना चाहिए। साधक और सेवक, यानी कि आप धरातल के साथ जुड़े हैं और धरातल के साथ आप गीता परिवार का जो जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हैं, और खास करके आप जम्मू कश्मीर राज्य में आप संयोजक है, आपको कितनी मुश्किलें भी आती होंगी उस पर आएंगे। तो फिलहाल आपको अब विराम देते हैं, हम जाते हैं राधा दीदी के पास। राधा दीदी हमारे पास कॉल भी आ सकती हैं, हमने नंबर दिया हुआ है, इंटरनेशनल कॉल भी आ सकता है, हमारा लोकल कॉल भी आ सकता है। अगर कोई कॉल आया तो हम कोशिश करेंगे उस कॉल को आप तक पहुंचाएंगे भी। नाउ लेट अस कम टू द जर्नी एंड इंस्पिरेशन इन जापान, एस्पेशली दिस शो ऑफ टुडे इज फोकस्ड ऑन जापान ओनली, हाउ यू हैव वर्कड देयर। आई जस्ट वॉन्ट टू ask you that you have been living in Miyazaki, Japan for the last 28 years, maintaining a demanding medical research and teaching career. Now, what inspired you to start Bhagavad Gita classes in Japan, and how did this journey with Gita Parivar begin? This is most important and every listener wants to know. Please unmute.
2: Sorry, yeah. As an Indian, it's obvious that from my childhood we are exposed to Gita, and as a child, I wanted to learn Bhagavad Gita, but when I opened the book, it was like the Mula Sloka was so difficult. I didn't know where to stop, where to continue. It was very difficult. And there was, at that time, there was no internet, there was no YouTube, there was no AI to help us, to teach us.
0: Yes.
2: So I just kept it aside. And the books were there to teach us about the meanings. Commentaries were there. How to read and how to read it, I could not find it. So I just kept it aside. And in 2022, my sister, Mary Behan, she sent a link, Gita Parivar ka link. There's an online class. Try it. Because she knows that she knew that I am interested in it. So she sent me the link. Gita Parivar se Judy 2022 March mein. Our first class mein I was zapped. I was like, wow, it's so easy. They are teaching it so beautifully, so easily. Anyone can start reciting Gita perfectly. And it didn't stop from there. So I continued. And in chapter 15, there was the shloka, Sarvasya Chaham Hridi Sannivishto. So that was again a mind-boggling thing for me, telling God is within us. We usually think God is somewhere outside, some external power, who is difficult to reach. But then when God is within us, there must be some way to reach. And my interest in Gita increased. And the Gita Parivar Vivechan sessions, weekends ka Vivechan sessions, helped me understand the meanings of the shlokas and make it like, bring it to life. Try to live Gita in the life. And I was like, I want to do something. They gave me so much. Gita has given me such beautiful knowledge in a very short period. Gita Parivar also is giving me such beautiful knowledge. So I have to do something, give back. Like, just like how Bhaskar Bhaiya said now, Har sadhak ko man chata hai ki wo sevi bane. So I became a sevi. I mean, I wrote the exam, I cleared the exam, became a trainer, and I started teaching the other sadhaks who are interested. And in 2023, ek Japanese sadhak hai, Yoko Matsushita Didi. She was in the same batch as mine. So she called me and said, Didi, Japan, Fukuoka mein ek program hai, culture, Indian culture program. Why don't we both recite Bhakti Yoga? Wo Japanese hai, but completely Indianized. Wo yoga karti hai, Bharatanatyam karti hai, Kalaripati karti hai, complete. India, every year she goes. So then we approached Ashu Bhaiya and he said, go ahead, because he knows me as a sevi and he also knew Yoko Didi. So he said, of course, both of you have my full permission to start Gita Parivar Japan. So that's how Gita Parivar Japan was started in 2023. It was a bit slow. We just had a group and some activities chalta tha. 2025, last year, May, we had Japan Expo. The International Expo in Japan.
0: Yes.
2: So there with the Consulate General of India, we had a program in that expo, Gita Awareness Program for the Japanese people. So what Japanese people who came to that for the program, we taught them one simple shloka, chapter 16 ka Abhayam Sattva Samshuddhya. They pronounced it so beautifully. I thought, wow. I think we should teach them Gita. They will really enjoy because their pronunciation is a bit different. Japanese language and Sanskrit is completely different, but still they pronounce so beautifully. I got the feeling like we should teach them Gita. And simultaneously, Ashu Bhaiya also, our president, international president and Gita Parivar president, working president, Ashu Bhaiya, wished that the Gita text, our class text, are made in all foreign languages. Nepali language, he to hai. It was there. So he wanted in other languages and he asked, why not Japanese first? We grabbed it.
0: Yes.
2: We grabbed the opportunity and So that's how classes. We don't have offline classes. Online classes hai. Jab start kiya hai, last month start kiya and we finished our Anandotsav last week.
0: Ji.
2: Japanese sadhaks bhi jude the and their pronunciation is awesome. We feel satisfied that we have done like fulfillment. Of course, we didn't do this job with this seva as with some expectation. We just wanted to take Gita to Japanese. In Japanese language. So we are having.
0: Radha Didi, there's a question in my mind. You talked about Yoko Didi, who was the first person whom you suggested the Gita Upadesh. and she remained with you and you started it. It was a beginning. Because this is an international show today, let me convey a message from all the Indians to Yoko Didi and kindly translate it to her in Japanese. योको दीदी हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पूरे भारत वर्ष के लोगों की ओर से. आपने जो काम गीता जी के लिए शुरू किया वो सभी जापानीज के लिए एक रास्ता बना. प्लीज
2: आई डोंट हैव टू ट्रांसलेट बिकॉज शी इज वेरी गुड इन
0: लेट लेट राधा दीदी लेट अदर जापानीज पीपल नो व्हाट आई हैड सेड प्लीज.
2: Okay, first one correction. I did not bring Yoko Didi to Gita Parivar. We came together.
0: Okay.
2: Because we didn't know each other. Okay. We didn't know each other till we got together.
0: Okay.
2: So, Yoko Didi, I'm getting Hindi and English. I'm not getting Japanese now. Oh, brain craft, some plasticity is getting a bit weak, I think.
0: Yes.
2: So, Yoko Didi, I'm saying Hamari Japanese. Sorry. Yoko Didi, Japan ka. See, I'm getting only Hindi. I'm not getting Japanese now.
0: Come on. Sorry. Come on. Let's continue. When this show ends, please do convey our feelings on behalf of all the Indians and all the Gita Parivar sadhaks and sevaks. Please do convey our message to them. It is very nice that this show is making us able to speak in Hindi and English only.
2: That's but I'm good. Forgetting Japanese.
0: That is so nice. That is so good. And let me go to Bhaskar ji, to you. And I just want to ask you that परम पूज्य स्वामी गोविंद देव जी गिरिजी महाराज जी का गीता परिवार के माध्यम से क्या उद्देश्य है? क्या आप विस्तार में हमें बता सकते हैं? Then I will go again to राधा दीदी.
1: Surely, because Swami ji visits all places of India. He जो गीता के बारे में जो व्याख्यान कर रहे होते हैं, South India वो चले जाते हैं. तो वो भारत के सभी जो भी लोग हैं हमारे, सबसे जानकार उनको पूरा ये जानकारी है कि हमारे इस समय जो स्थिति है भारत की, खासकर सनातन धर्म के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या करने की आवश्यकता है. तो इस समय हम देख लेते हैं, जैसे भी आपने देख लिया जो अभी रिसेंटली दिल्ली में जो वो एक ये इशू हुआ था रेज ना, मैं बोली शब्द जा रहा हूँ इसके शब्द का, जो एक एजिटेशन थी दिल्ली में, तो आपने देखा वहां पे हमारे यंग जनरेशन का कैसा व्यवहार है, उनके संस्कार कैसे है. तो ये स्वामी जी को बहुत पहले से ही इसकी फीलिंग हो रही है. तो गीता परिवार जो गीता सिर्फ गीता जी को सीखने में, उसका उच्चारण सीखने के अतिरिक्त हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो संस्कार जो हमारे समाज में थे जो लुप्त होते जा रहे हैं, उसके विषय में गीता परिवार इस समय काफी कार्य कर रहा है. हमारे जो नई पीढ़ी है उनको संस्कार देने के लिए, देशभक्ति सिखाने के लिए, तो इसके लिए 5 सूत्री कार्यक्रम स्वामी जी ने तैयार किया है. मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में, लंबे में नहीं बोल सकता. 5 सूत्री कार्यक्रम क्या है? पहला है भगवत भक्ति, मतलब हम जो हमारी जो हमारा समाज है उनको भगवत भक्ति सीखने की आवश्यकता है. भगवत भक्ति सीखने का क्या अर्थात है, हमारे जो समाज में विनम्रता आनी चाहिए, मृदुभाषिता आनी चाहिए, सत्य बोलने की शक्ति आनी चाहिए, अभय रहने चाहिए, आत्मविश्वास, प्रेम, अहिंसा, धैर्य, संतोष और विश्व बंधुत्व हमारे समाज में उजागर होना चाहिए. ये एक सूत्र है. दूसरा है भगवद गीता. अब भगवद गीता सीखने का क्या अर्थ है, नियम पालन का जो एक इंसान में जो आवश्यकता है नियम पालन की, वो भगवद गीता सिखाती है. दृढ़ निश्चय करने का वो हिम्मत देती है. सदाचार, एकाग्रता, कर्म सिद्धांत, निर्णय शक्ति देता है, परोपकार करने की शक्ति देता है और जीवन जीने की कला सिखाती है भगवत गीता. तीसरा है भारत माता. तीसरा जो सूत्र है वो भारत माता की सेवा करने का, कैसे करने का, भारत माता के लिए हमको शौर्य होना चाहिए, त्याग एवं बलिदान की हमारे पास शक्ति होनी चाहिए, सेवा करने का, जैसे अभी मैं बोला, अभी आप बात कर रहे थे साधक और सेवा करने की क्षमता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, देश के प्रति अपना अपनत्व की भावना होनी चाहिए, ये एक और सूत्र है। चौथा है विज्ञान दृष्टि। हम जो भी जीवन जीते हैं, हम जो बातें सुनते हैं, उसमें हमारे पास जिज्ञासु दृष्टि होनी चाहिए, मूल्यांकन क्षमता होनी हमारे में होनी चाहिए, शौचाचार होना चाहिए, कुशल प्रबंधन होना चाहिए, तर्कपूर्ण ज्ञान जनन शैली होनी चाहिए। और पांचवा सूत्र जो है स्वामी विवेकानंद के आदर्श। जैसे सब लोग जानते हैं कि विवेकानंद उनका जो जीवन रहा है वो हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही एक प्रेरणादायक रहा है, तो इस विषय में हम संस्कृति प्रेम सिखाते हैं, जो हमारे संस्कृति रही है हमारे समाज में, जो पहले से जो हमारे विचार थे समाज में, उनको फॉलो करने का हमारा ये है। धर्म का सही एवं वास्तविक दर्शन कराने की जो विवेकानंद जी की इच्छा थी, वो उजागर करने की हमारी प्रयास है इस समय समाज में। दक्षता, दूरदर्शिता, नेतृत्व करने की शक्ति, संस्कृति विज्ञान का संतुलन, ये पांच सूत्र ऐसे हैं जो स्वामी जी ने तैयार किए हैं। इन सूत्रों के आधार पे हम ऑफलाइन कार्यक्रम कर लेते हैं, हम समाज तक जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, और खासकर जो हमारी नई पीढ़ी है, हम स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में हम संस्कार शिविर या संस्कार केंद्र का आयोजन कर लेते हैं, उनकी बाल शिविर कर लेते हैं। तो ये सब चीजें इसके लिए एक पद्धति तैयार की है, बाल संस्कार शिविर कर ले। तो गीता परिवार ने एक पद्धति तैयार की है, जो पांच सूत्री मैंने आपको बता दिया
0: जी।
1: इनको समझाने के लिए, हमारे समाज को समझाने के लिए जो पद्धति तैयार की है, उसके आधार पे हम अपने बच्चों के साथ मिलते हैं उनको। और ये नहीं कि जैसे आपको पता है आजकल जो स्टडीज का प्रेशर हमेशा बच्चों पे रहता है, तो ये पद्धति ऐसी है जो हंस हंस के खेल खेल के हम ये इन अपने साधकों, अपने बाल जो हमारे है नई पीढ़ी है, उनको सिखा देते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग भी बाजार हमको गीता परिवार देता है
0: जी।
1: और अभी जम्मू कश्मीर में हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बट एक है कि मैं अपने जो जम्मू कश्मीर के गीता परिवार के जो सेवक हैं या साधक हैं, उनसे निवेदन ये है कि इसमें हमें मैन पावर के बहुत आवश्यकता है, तो वो हमें
0: ज्यादा से ज्यादा
1: अगर वो प्राप्त हो तो हम इसमें बहुत अच्छा
0: जी
1: हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं
0: जी।
1: तो इस समय ये स्थिति हमारी जम्मू कश्मीर की जहां तक
0: जी। भास्कर जी आपने बहुत सही बताया, क्योंकि जो भगवत भक्ति है और हमारा जो अपना जो हमारा तरीका है जिंदगी जीने का, जीवन जीने का, अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो बहुत ही आसान और बहुत ही मुश्किल जो है वो नहीं था। और जो उद्देश्य है वो एकदम सरल है और एकदम सटीक है हम सबकी जिंदगी के लिए। आज के डेट में हमारे बच्चे जो हैं, जिनका जो तौर तरीका जिंदगी का है वो बदल चुका है, क्योंकि ऑनलाइन जॉब्स है। अगर वो यूएस क्लाइंट के साथ बात करते हैं, हम यहाँ सब सो रहे होते हैं तो वो जाग रहे होते हैं, और जब हम जाग रहे होते हैं तो उनका सोने का टाइम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ का जो चक्र है वो थोड़ा बदल गया है। जो संस्कार एक बच्चे को परिवार में मिलते थे, संस्कार का टाइम जब मिलने का था तब तो पेरेंट्स सो रहे होते हैं और वो जाग रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो गीता जी का उपदेश है उसको कहीं ना कहीं सामने हमें लाना होगा, ताकि हम अपने जो जीवन को और अच्छे से हम बना सकते हैं। भास्कर जी आप दो जगह से क्यों जुड़ रहे हैं, इससे डिस्टर्बेंस हो रही है, आप एक जगह से एग्जिट हो जाइए। लेट मी गो टू राधा दीदी एंड लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन टू राधा दीदी। राधा दीदी, इंट्रोड्यूसिंग स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स अक्रॉस कल्चरल एंड जियोग्राफिक बाउंड्रीज इज रियरली इजी, बट व्हाट वर द इनिशियल चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स यू फेस्ड व्हाइल establishing Gita classes in Japan, and how did you overcome with them?
2: Ji, so we did not first inter- we are not introducing Japanese, or we are not introducing Gita as a spiritual text.
0: Ji.
2: We are introducing it as a life management course.
0: Okay.
2: Because Japan में भी we have problems like life balance, work life balance का problems है. So there is more of tensions and anxiety problems in Japan. So we are planning, we are trying to bring it as a life management course. Of course, Japanese are aware of these things, like their Buddhism and Shintoism is just like our Hindu scriptures, what they are saying, teaching. So, but still how to bring it into practical and daily life, we are trying to bring it, expose Gita as a life management course. Our the problems that we faced is mostly the Japanese language. The alphabets are limited. It's there with like, they don't have Mahapran or Halant or Cha Varga. They are not cha, ta. They don't have ta. They don't have that murdhanya sha. All, and la. La letter is not there in their script itself. So to teach Sanskrit for in a language which is lacking these letters,
0: yes,
2: is the biggest hurdle. So we had to use diacritics. And the diacritics, the symbols that we use for Roman characters, they were not adaptable. We could not use them for Japanese letters. We had to make them by ourselves. So preparing the text with the Japanese, like that, what we find on the internet, like if you put Sanskrit sloka in Japanese, we get a very simplified Japanese translation, the transliteration, which is not perfect because they don't have la, they don't have ta, they don't have halant, and they don't have Mahapran letters. So we had to bring all those into the text.
0: Yes.
2: And that was a big challenge. And even now, the text that we are preparing, we have some few limitations in it, but I'm sure by Krishna's Kripa, we will overcome those challenges.
0: Radha Didi, there are so many challenges. Definitely, when we go to some other country and other tradition, other language, there are some words which are not available in other languages. So, the religion which is being accepted there, beyond that, that must be there, that must remain there. Beyond that, when Gita ji is listened, read there, and how do you see the changes in those persons who adopt this, who read this, who love to find the solution from this?
2: Okay, let me give a practical, the personal experience of one of our sadhaks who learnt Gita last month in our new class.
0: Ji.
2: She, during the Anandotsav, she said she doesn't know the meaning of the shlokas that she's reciting. Whatever I'm teaching in the class, she's just repeating and practicing it with Vijaya Didi and Swarna Kaki's audios that are shared. And she says when she's reciting, she feels a warmth in her stomach, in her belly region.
0: Great.
2: And she feels happy. And not only her, her husband who is seated next to him, next to her, he also feels happy. So that is, even before they can understand the meaning, they feel that warmth, they feel that that happiness is there. That is because it's already proved in scientific reports as studies that reciting, studying or reading Sanskrit shlokas, it changes our brain waves from beta. We always are in beta wave,
0: yes,
2: very anxious, and our mind is like a monkey. But when we are reciting, when we are reading Sanskrit, or when we are meditating, actively meditating, the brain wave shift from beta to alpha. And alpha calms us and it increases the happy hormones. We feel happy. So this is a very practical experience which she shared with us. And Yoko Didi also says, our veteran, Sevi, she also says, whenever she reads Gita, she feels that warmth in her stomach region. So there is something physiologically also happening within them, and they're experiencing it. And trust me, there is one sadhak these sadhaks didn't know. They know some shlokas, Sanskrit shlokas. I believe one of them has always been using Brahmarpanam Brahma Havir and Aham Vaishwanaro Bhutva before his food, Japanese, before taking his food, has been reciting these shlokas, but they didn't know that they belong to Bhagavad Gita. So when we taught him chapter 15, he was so happy. I have been reciting all this shloka all these days, these years. I didn't know it was Gita. So I'm so happy now to connect. So the connection with Gita has become more strong with them. I hope it increases. They will increase. Like right now, what our sadhaks in Japan are not they are already connected with Indian culture. They know a little bit of Indian culture, like yoga or Bharata, like cultural dance, or something like some studies, literature studies. They are already connected and they know a little bit about Bhagavad Gita. They want to know how they want to pronounce, recite it perfectly. So such sadhaks are coming to us. So I think that is the gateway. From them, we can gradually increase and spread it to the normal other Japanese also who don't know about Indian culture. We can teach them about our Sanatan Dharma. We can teach about Gita also.
0: Great, Radha Didi. I just want to ask you, like you said, that it is the gateway to go ahead. How Radha Didi finds within the community of those sadhaks and sevaks, how you feel and what the inner inner thoughts, what say to Radha Didi when she teaches Gita Upadesh or Gita Shlokas to them?
2: How I feel?
0: Yes.
2: To be a part of it. Yes. So it is my prayer or my arpana to Sri Krishna. So whenever I start anything, it is like Sri Krishna arpana mastu. And when I'm doing that, that means I'm giving it to Sri Krishna. I have to give my best, right? Great. I can't offer something meager to God. Mm-hmm. So I give my best effort in whatever I'm doing. Not only in teaching Gita to the sadhaks or to the children. We also have children program. But in any of my activities, this has become my daily routine. Krishna arpanamastu and then do your level best as a nimitta matra. I'm just a nimitta matra of Krishna. So there is no credit. We are not taking the credit.
0: Thank you so much. Main just apne shrotaon ko ye zarur kehna chahunga. Jaise abhi hamare paas ek comment aaya hai. It is on screen. You can read it. Geeta Parivar se Dolly Mantu ji likh rahe hain. During recitation, we also feel vibration in our both hands and shastra. मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि अभी राधा दीदी ये कह रही थी कि जब कुछ लोगों ने गीता के श्लोकों को पढ़ा, उनको महसूस किया, दे उनको अपने शरीर में, अपने आप में, अपने आत्मा में, अपने शरीर में कुछ बदलाव दिखे, तो हम सबके लिए भी एक ये प्रेरणा वाली बात है. और साथ में डॉली मंटू जी लिख रहे हैं, लाइफ मैनेजमेंट कोर्स वी मस्ट ऑल्सो एड इट इन आर स्कूल्स. हाँ, हमारे देश में इन चीजों को लागू करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जितने ज्यादा लागू करने वाले हैं उससे ज्यादा उसके विरोध करने वाले भी हो सकते हैं. बट लेट्स थिंक पॉजिटिव. और जो भी इन तरीकों को अपनाया जा सकता है जो पूरे देश के लिए सही है, उनको ही हम आगे की तरफ हमें लेके जाना चाहिए, ताकि कोई विवाद ना रहे. और सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदू राष्ट्र है, और अगर हिंदू धर्म की कोई बात है उसको किसी भी तरीके से हमें अपने युवाओं तक पहुंचाना चाहिए, ताकि एक सही दिशा उन युवाओं को दी जा सके. राधा दीदी, आई जस्ट वॉन्ट आस्क यू, कम्युनिकेशन इज द की वेन कनेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, क्योंकि कल्चर अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग तौर तरीके हैं. Have you addressed and conducted classes or sessions directly in the Japanese language to connect with local community?
2: Ji, we did. Like in the Gita, that Japan Expo, where last year we had, the program was in Japanese. It was bilingual, but mostly because we saw that the audience were mostly Japanese. So we made it into completely Japanese language. We explained to them about Gita in Japanese. We had a quiz about India also. Everything was in Japanese so that they can connect. And again, last year we also had another Gita Jayanti program, Mahotsav. Consulate General of India, Osaka, had a program, Gita Jayanti. And there in Todaiji Temple, that is the famous Buddhist temple, we had a Gita program in Japanese, and I gave a talk in Japanese about Gita. So when we are reaching out to the local community, we want it to be in their language so that they can understand. बिकॉज ये होता है लाइक वेन यू टॉक इन इंग्लिश देर इज सम बैरियर
0: यस
2: राइट लाइक दिस मेंटल बैरियर लाइक हाउ फॉर मी नाउ बिकॉज आई एम टॉकिंग इन हिंदी एंड ट्राइंग टू फ्रॉम मॉर्निंग आई हैव बीन ट्राइंग टू टॉक गेट ओनली हिंदी वर्ड्स इन माई ब्रेन बट जापानीज लैंग्वेज सेंटर गॉट शट ऑफ सो जापानीज दे आर ट्राइंग टू टॉक इन वेन वी टॉक इन इंग्लिश इट्स अ बिट difficult for them. Not all Japanese. Some Japanese are very good in English, but if you want to reach to the local community, we try to do it in Japanese.
0: But Radha Didi, I will request you to open up some Japanese words at the last, because I will request you to address all your Japanese friends in their own language, so they can understand and they can love to listen to you in Japanese, and I will request you to gather some beautiful words for them and for us also.
2: Sure. I will switch my screen. Yes.
0: Yes. We have a comment here from Rishi Kaul. He writes, मुझे भास्कर भैया ने गीता परिवार में लाया था. आज मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है. मुझे अब पता चला है कि मानवता क्या है. भास्कर जी आप ही इसका रिप्लाई करिए और आपके स्क्रीन पर ये टेक्स्ट है और आप ऋषि कतल से आप अपनी बात करिए.
1: ऋषि कतल जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि कतल जी. हमारा तो 24 घंटे का यही काम है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेवा एक ऐसा काम है जो आपको बहुत प्रसन्नता देती है, तो ये हम काम इसलिए कर लेते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए. भगवान ने भी गीता में यही कहा है, जितना आप सेवा कर सकते उतना कर लीजिए. तो हमने ऐसा अभियान चलाया, गीता परिवार की सेवा कर लेते हैं यहाँ पे. तो इसमें हमारा रोज का काम है, नए नए साधकों को रजिस्टर कर लेते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका कमेंट सुन के कि आपने मेरी वजह से आप गीता परिवार में ज्वाइन कर गए और आपके जीवन में एक अच्छा सा बदलाव आया, आपको समझ आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है. और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो सनातन धर्म की जो स्थिति आजकल, जैसे अभी मैं बात कर रहा था संस्कार के बारे में, जो हमारे संस्कारों की जो कमी हमारे परिवार हमारे समाज में हो रही है, उसके लिए गीता परिवार ने जितने भी कार्यक्रम हम चला रहे हैं, हम तो प्रयास करना संभव हो रहा है, पर हमारे जम्मू कश्मीर में इसकी जो मैन पावर है सेवकों की बहुत आवश्यकता है. तो मैं चाहूंगा कि आप, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके आपको पता चला कि मानवता क्या है, तो मानवता यही सेवा करना, सबके हमारे समाज की सेवा करने का है. और संस्कार जो हमारे समाज से लुप्त हो रहे हैं उनके बारे में हम सेवा करें, तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस अभियान से जुड़ेंगे. और बहुत बहुत धन्यवाद, आपको याद है कि मैंने आपको ज्वाइन करवाया.
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने कमेंट हमारे तक पहुंचाया और हमने कोशिश की कि उसको सीधा ही भास्कर जी तक लेके जाए और वो उसका रिप्लाई भी करें. और राधा दीदी हाउ डू यू फील इन द शो?
2: आई एम एंजॉयिंग इट, ऑल्दो द हिंदी पार्ट इज गिविंग मी अ बिट ऑफ टेंशन, बट यू रिलैक्स्ड मी बाय टेलिंग दैट आई कैन टॉक इन इंग्लिश. सो कंप्लीटली आई केप्ट हिंदी असाइड एंड आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश. सो बट माफ कीजिए
0: उसके लिए. चलिए लेट्स गो अहेड, क्योंकि हमारे इस शो का समय जो है वो समापन की ओर है. आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जापान इज नोन फॉर इट्स डीप वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन माइंडफुलनेस एंड ड्यूटी यानी कर्म. डू यू फाइंड दैट जापानीज कल्चरल वैल्यूज नेचुरली अलाइन विद द प्रिंसिपल्स टॉट इन भगवद्गीता?
2: यस ऑफ कोर्स. Bhagavad Gita has connections with Japanese cultural values are connected with Buddhism and Shintoism. Shintoism is the Japanese original religion or belief, and Buddhism came to Japan, and the concepts, the principles followed in Buddhism and Shintoism are present in Gita also. Buddhism focuses on Nishkan Karma, it focuses on Dharma, it focuses on Nirvana. All these three are also found in Bhagavad Gita. We have Nishkam Karma, we have Sthita Prajna, which is like Bodhisattva, and we also have Moksha, that is like Brahma Nirvana, that is same as Nirvana. And same way, Shintoism is more, I feel, is more connected to Bhagavad Gita, to not only Bhagavad Gita, to our Hindu customs, culture. It's more connected because they believe in nature. they believe in the five elements of nature. They see God in everything. In all the nature things also, they see God just like us. They have so many gods. They believe in the divine power. And some sects of Shinto, they believe that God is within that person's heart. Sarvasya chaham hridi sannivishto. So again, Bhagavad Gita is telling the same thing.
0: Yes, yes.
2: And their way of connecting to that God is purification. Shaucha, shuchata. Like how we also have shaucha, cleanliness. Mm. They also have purification rituals. They don't do yajna as such, but they have some purification rituals. Like when we go to a Shinto shrine, we don't walk in the center of the shrine or the gate.
0: Okay.
2: We walk on the side because the center is restricted. It's for gods to come.
0: Okay.
2: And then before going to the shrine, they wash their hands. There's a purification of washing hands, legs and mouth. For purification, even we also have those purifications, and every year, New Year also, they have this purification. When a baby is born, they have prayers in the Shinto. So there are so many connections that align with our Hindu customs, culture, and Bhagavad Gita, the mindfulness, Atma Sanyama Yoga, Dhyana Yoga, meditation and mindfulness that teaches, Bhagavad Gita teaches us, it is also there in them. And then Abhyasa, Vairagya, all those, whatever is there in Bhagavad Gita, I can see a connection with the Shintoism. So they are naturally connected with Bhagavad Gita, although they don't know that these are the teachings already also found in Bhagavad Gita.
0: I am happy to ask this question, Radha Didi, because this question have connected both the countries culturally and traditionally as well. And through Radha Didi, we are knowing the Japanese system, the Japanese religion, and the Japanese way of talking. And now let me ask you a personal question. Shall I?
2: Yes.
0: As an assistant professor specializing in cardiovascular physiology with two PhDs, how do you personally bridge the gap between scientific medical research and spiritual wisdom in your daily life? And I'm adding the connection with the family, the time spent with the family, the time spent with all the responsibilities you have, and after all, yourself, because self-love is most important. Please.
2: Okay, so my daily life starts with reciting chapter 18, Bhagavad Gita. Every day for the past 1 year, I've been reciting chapter 18 without fail, because it is the essence. It is like summary of entire Gita.
0: Yes.
2: And if it is an odd day, like today is 31st, it's an odd day. So all the odd chapters of Bhagavad Gita, I will see to it that I recite. By Gita Parivar's grace, I have memorized the shlokas. So all the 18 chapters I can recite wherever I am, like whatever I'm doing, which doesn't need my mental focus, I will be reciting these chapters. And on even days, I'll be reciting the even chapters.
0: Wow.
2: So what happened? Because Gita Parivar is also teaching us the meanings of the shlokas. When I'm reciting, it is not just blindly reciting. I'm trying to, realizing the meanings behind the shlokas and want to get it into my life, right? And as you said, because how do you connect scientific and your spiritual? This, I don't see it as a spiritual way of life. I see it as a practical way of life. Because when I'm reciting, I told you about the sadhaks, that they feel warmth in their stomach. For me, I feel warmth in my heart. And my mind becomes sort of calm. And when I say Krishnarpanamastu, the work that I'm going to do is much more easy. I feel it's more easy for me to focus. Because I'm giving it to God. I'm arpana, doing the arpana to God. And I'm easy, as a scientist, we need to think practically, logically think. It becomes more smoother. And because it is I am a nimitta matra, I am an instrument of God. It's not me doing that. I'm doing it because God has given me this opportunity. And so the result is not, my mind doesn't go to result oriented. It is okay, now whatever I'm doing, I'm going to do it, give it the best.
0: Yes.
2: So that's how my work goes, and my day at home, it's quite peaceful, because we are in Japan, we don't have housemaids or helps. help us to help our work. All of us have to do our own job.
0: Yes.
2: Every house.
0: Yes.
2: So the husband and wife, we manage between us. We share. Like here in the in India, usually the men don't help at home.
0: But we.
2: But the same
0: but
2: men.
0: I am, but I am helping at my own level.
1: That is not true.
0: Because I will have to, because I will have to reply after the show. Yes.
2: So the men, when they come out of India, they know that everything is on the wife. She cannot do everything by herself. So they share.
0: Yes.
2: And looking at their father and mother doing, the children also learn.
0: Yes.
2: So they also contribute. I have two boys. So they also learn to do things. So household work becomes sort of smooth. It's not, the burden is not entirely on the woman. And I don't have other distractions like padosi ko ghar mein jana hai, baat karna hai, ya this wedding attend karna hai. There is no gathering of here. Okay. So I have a lot of free time for myself, which I dedicate, like I try to use it to learn more about Gita.
0: Radha Didi, thank you so much. And this
1: Didi, do baat main karna chahta.
0: Yes, I will. Yes, I will. Radha Didi,
1: main
0: aapko time de raha hu. Main aapko time de raha hu, Bhaskar ji. Now this time of this show has completed, but we will continue for a few minutes more. मेरा मन नहीं करता इस शो को क्लोज करने का, बट एवरी वर्क हैज अ टाइम. एंड भास्कर जी, आप अपनी बात कहिए और साथ में मैं आपको स्क्रीन पे एक कमेंट दिखाता हूं. आप मुझे ये बताइए कि आपको ये काम करने में परिवार का कितना सहायक है, कितना वो आपको साथ देते हैं. और शशिदास जी लिख रही हैं एक्सीलेंट, तो आप उनको भी रिप्लाई कीजिएगा और साथ में जो आप अपनी बात कहनी है वो भी कर लीजिएगा. फिर हमारे पास दो कमेंट्स आए हैं, वो भी मैं स्क्रीन पर लाना चाहूंगा. भास्कर जी.
1: जी जी, दो बातें हैं. अभी कुरुक्षेत्र में जब कार्यक्रम हुआ था तो वहां पे स्वामी जी ने बोला कि जो हम सेवा कर लेते हैं गीता परिवार के लिए, उसके लिए संकल्प करें.
0: जी.
1: तो मैंने अपने आप को संकल्प किया, 280 डेज का मैंने समय दिया कि मैं 280 डेज का ही, नहीं तो मैं पूरा साल कर लेता. 200 डेज का ही ऑप्शन था, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था कि आई विल वर्क फॉर गीता परिवार फॉर 280 डेज. उस समय जब ये संकल्प मैं कर रहा था, स्वामी जी के समक्ष हमने ये संकल्प लिया है, तो उस समय मन में तो मुझे पता था कि ये संकल्प केवल मेरा नहीं है, मेरी जो धर्म पत्नी है दोनों को हमने करना है. और मैं बड़े आदर से ये कह रहा हूँ कि वो पूरा जो भी एक्टिविटी कर लेते हैं गीता परिवार सम्मत, वो शी ऑलवेज रिमेंड मी, कोई उसमें वो बात नहीं है कि वो हमें साथ नहीं देती है. और जैसे भी दीदी बोल रही थी, दादा दीदी बोल रही थी कि भारत में जो पुरुष लोग काम नहीं कर लेते हैं, तो हम घर के काम में भी हम पूरा सहयोग कर लेते हैं. हम बचपन से ही ऐसे वर्किंग रहे हैं, हमने कभी ऐसा फील नहीं किया. आई लाइक टू वर्क, मुझे बैठने का बिल्कुल आनंद नहीं आता है, तो घर में भी जितना मेरे को समय मिलता है मैं घर की तो वैसा वर्षा है. शशि भी पूरा सहयोग देती है, जो हम जो भी कार्यक्रम कर लेते हैं शी इज ऑलवेज विद अस, कोई उसमें. और फ्रॉम डे वन जब हम, मैंने संकल्प भी नहीं लिया था तब भी वो हमारे साथ रही. और रिसेंटली मेरी आशु भैया से, आदरणीय आशु भैया से बात हुई थी, तो मैंने बोला कि वहां पे मैं आपको, मेरे को माइक का अवसर नहीं मिला था माइक पे बोलने का, बट यहाँ मैं आपको बोल लेता हूँ. जो संकल्प मैंने लिया था वो मैं अपने लिए नहीं था, वो पूरे हमने दोनों के लिए लिया था. तो वो बड़े अच्छे, अच्छा अच्छे वो, मैंने कहा वो तो उसके बगैर तो नहीं हो सकता, अकेले आप नहीं कर सकते. ये तो आपने उस प्रश्न की उत्तर रहा मेरा. दूसरा तो राधा दीदी का जो मैं जब से भी उनको जानता हूँ, थ्रू गीता पर ऑनलाइन हम बीच बीच में कनेक्ट हो पा रहे हैं, जो ज्वाइंट कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं. तो इन्होंने जो जापान के जो साधक हैं, इन्होंने उनके वो श्लोक जो उनका रिसिटेशन इन्होंने शेयर किया था, हम तो दंग रह गए कि इतना एक्यूरेट उनका उच्चारण था. उनमें पूरा गीता परिवार उनको देख के बड़ा प्रसन्न हो गया, सबने अपने रिमार्क्स हैप्पीनेस के रिमार्क्स दिए थे. अब दूसरा मेरे जो सोच है कि अगर जापानीज जैसे राधा दीदी वहां पे गीता परिवार का इतना काम करें, और जापानीज लोगों को उन्होंने तैयार किया गीता का उच्चारण सीखने के लिए, गीता को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत प्रेरणा है हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए. अगर जापानीज जिनको उतना इसके साथ लिंक नहीं है, बट वो भी इसको यूटिलाइज करना, इसको पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रेरणा है हमारे भारतवासियों के लिए कि जैपनीज अगर कर सकते हैं तो हमारे तो धर्म की बात है, हमारे सनातन धर्म का तो ये एक ग्रंथ है, अगर हम इसको सीखना पढ़ना सीखेंगे उसके बाद उच्चारण किया एक्स्ट्रा फिर उसका अर्थ सीखेंगे, जैसे स्वामी जी का कथन है गीता पढ़ाए फिर जीवन में लाएं। और बार बार हम कहते हैं कि खाली पढ़ने से आपको गीता का ज्ञान उतना प्रासंगिक नहीं लगेगा, जब अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करेंगे तब जाके ही आपको लगता है कि गीता का असली वैल्यू क्या है, वो हमारे जीवन में उसका असली वैल्यू क्या है। तो दीदी हमारे राधा दीदी हमारे लिए मार्गदर्शक है हमारे भारतवासियों के लिए। इन बिटवीन मीनाक्षी दी भी ज्वाइन कर गई हैं, नमस्कार
0: मीनाक्षी जी, स्वागत स्वागत आपका, और आप दो तीन बार जुड़े। जय श्री कृष्णा जी।
3: अरे मैं ट्रैवल में हूँ भैया ना।
0: कोई बात नहीं, अब आपको
1: बहुत मिस कर रही दीदी कार्यक्रम में।
0: अब आप राधा दीदी से डायरेक्ट बात कर लीजिए और फिर मीनाक्षी दीदी चली गई, शायद नेट का इशू है। चलिए हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमारे पास दो कमेंट्स आए हैं, वो मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ, आप भी पढ़िए और मैं उनको पढ़ लेता हूँ। गीता परिवार डॉली मंटू लिखती हैं, थैंक यू सो मच राधा दीदी, भास्कर भैया एंड भारत भैया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, इट विल इफेक्ट आवर कम्युनिटी एंड वर्ल्ड एज होल। जय श्री कृष्णा। और क्या कहेंगे राधा दीदी डॉली मंटू को?
2: जय श्री कृष्ण डॉली दीदी, थैंक यू सो मच आपका प्रेरण एंकरेजमेंट से वी कैन गो अहेड विथ अवर कंटिन्यू गिविंग द सेवा लाइक दिस। हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, जस्ट स्मॉल स्टेप्स वी आर टेकिंग फॉरवर्ड, बट गीता परिवार का फुल सपोर्ट है, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू दे आर अलाउिंग अस टू डू इट। सो इसी ऐसे ही वी वॉन्ट टू स्प्रेड इट टू अदर पार्ट्स, अदर कंट्रीज ऑल्सो, हमारे लाइक डिफरेंट कंट्रीज, अमेरिका यूएसए में बढ़िया काम हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है, थाईलैंड सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया यूके डिफरेंट कंट्री नेपाल, दिस वंडरफुल जॉब गोइंग बट इन स्मॉल पैकेट्स पॉकेट्स, सो वी वांट टू एक्सटेंड इट फर्दर एंड विद एवरीवन्स ब्लेसिंग्स एंड कोऑपरेशन आई एम श्योर गीता परिवार विल गेट गीता हर कर गीता हर घर गीता।
0: We have another comment, Pranji Thusu, he is writing that धन्यवाद राधा दीदी फॉर यूर एक्सपीरियंस विद भगवद गीता, गुरु कृपा बनी रहे, जय श्री कृष्ण।
2: थैंक यू, जय श्री कृष्ण पूरन जी, थैंक यू सो मच, गुरु कृपा कृष्ण कृपा सभी को, वी नीड इट वेरी मच फॉर अवर लाइफ प्रोग्रेस एंड विदाउट देयर ब्लेसिंग्स इवन आई विल नॉट बी हियर, हु एम आई टू टॉक अबाउट गीता, दैट्स व्हाट आई आस्क्ड भास्कर भैया व्हेन ही आस्क्ड मी, हु एम आई टू टॉक भैया, आई एम जस्ट अ साधक, देयर आर सो मेनी पीपल बट बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस and Swamiji's kripa blessings we are here doing the seva, so I hope everyone gets the blessings and everyone can start giving seva.
0: And the last comment from Ramkrishan Sapru, Jai Shri Krishna, Gita Parivar has been doing a great service for the entire Sanatana, Lord Krishna has chosen the dedicated team for this noble cause, thank you Gita Parivar.
2: Thank you. Thank you. True. So much, well said.
1: समाप्त करने से पहले एक और मेरी निवेदन है
0: जी।
1: राधा दीदी को एक हम हमारा सौभाग्य है कि राधा दीदी हमारे पास बीच में है, एक अच्छा अवसर है, गीता परिवार ने गीता परिवार जम्मू कश्मीर के लिए एक फेसबुक का अकाउंट जनरेट किया है, तो मैं राधा दीदी से मेरा निवेदन है कि वो आज इस कार्यक्रम के थ्रू ही उसका इनॉग्रेशन करें दीदी
0: प्लीज।
1: एक मेमोरेबल समय रहेगा, इस समय ऐसा रहा कि आपके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ।
2: भास्कर भैया कांग्रेचुलेशंस, इन जापानीज वी से ओमेदेतो गोजाइमास, वेरी गुड वंडरफुल बढ़िया फेसबुक गीता परिवार जम्मू कश्मीर, सो वी प्रे दैट the Facebook increases the number of sadhaks, we reach out to many more people in Jammu Kashmir and all around the world, and congratulations bhaiya, and let us all start, we should also have Gita Parivar Japan Facebook, we should have Gita Parivar every state ka Facebooks, so that we can spread all over, and congratulations bhaiya, thank you so much for being the prerana, we will also start
0: and with Gita Parivar and the last session from Radha,
1: thank you so much for your
0: जी एंड द लास्ट थिंग फ्रॉम राधा दीदी एंड द लिसनर्स एंड योर फ्रेंड्स फ्रॉम जापान प्लीज डू एड्रेस देम एंड आस्क देम टू ज्वाइन मोर एंड मोर एंड आई होप यू वुड हैव रिकलेक्टेड ऑल द जापानीज वर्ड्स प्लीज गो अहेड एंड देन आफ्टर दैट वी विल क्लोज द शो
2: थैंक यू जी सो फर्स्ट वॉज योको दीदी थैंक्स टू योको दीदी राइट योको दीदी अरिगातो गोजाइमास गीता परिवार का गीता परिवार नो गीता क्लास वो निहोन दे किरोगेरु योनी योको दीदी नो गो क्यो रियोकु नी कांसा शिते ओरिमास अरिगातो गोजाइमास And now I'm going to the general public, everyone, thanking them for participating. So, 本日のご参加誠にありがとうございました。皆様がこれからもギターの道を歩み続け、幸福と平和に満ちた実りある人生を歩まれるますよう、心よりお祈り申し上げます。J ギターまた J シリクリシナ。
0: Jai Shri Krishna, and you have made Radha Didi our show an international show, and I am sure that this show will now go to other countries, like you said, Singapore, Thailand, US, and I will request Radha Didi to be part of that, even for a moment. और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और जो हम यहाँ पर काम करते हैं कोशिश ये है कि हम एक सही रास्ता लोगों को दिखाएं अपने समाज को दिखाएं जो हमारे आसपास रहते हैं उनको दिखाएं और हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस शो में जुड़े जिन्होंने कमेंट्स किए हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं और रेडियो वितस्ता पर जितने भी लोग हमारे अंबाला में सुन रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो के साथ जुड़ने के लिए हमारी बात सुनने के लिए और भास्कर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ और राधा दीदी स्पेशल थैंक्स टू यू आप जुड़े हमारे साथ इस शो में And you have made us proud also to be an Indian working outside India for the benefit of people, for the benefit of humanity. Jai Shri Krishna to everyone. Thank you so much.
2: Jai Shri Krishna. Dhanyavad. Thank you so much.
1: I think it's my pleasure to be with you on the same show. Thank you so much, Didi.
2: Thank you. Thank you so much.

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली,

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

0: यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
5: हर

0: नगमों की मिठास और संदेश में छुपा अपनों का एहसास, हवाओं में घुलती ये कैसी सदा है, दिलों के तार जोड़े ये संगीत की दुनिया बड़ी जुदा है। रेडियो विदस्ता के सभी प्यारे श्रोताओं को भारत सोपोरी का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार,
1: और मेरे यानी आपके अपने आरजे किरणी की तरफ से भी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हमारे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से भी प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब संगीत का साथ हो और अपनों की बात हो तो वक्त खुद ब खुद हसीन हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा किरणी, और आज की दोपहर तो कुछ ज्यादा ही खास है। हमारे श्रोताओं के मन में एक शिकायत भी होगी और चेहरे पर एक मुस्कान भी, क्योंकि पिछले दो हफ्ते से आप सब हमारे आर्काइव्स से कार्यक्रमों का आनंद ले रहे थे।
1: जी हाँ, हमें बहुत से मैसेज मिले हैं जिसमें हमारे श्रोता पूछ रहे थे कि नया एपिसोड कब आ रहा है। दोस्तों, आपके इस बेताबी को देखकर हमें एहसास हुआ कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। दो हफ्तों तक आपने पुरानी यादों को ताजा किया, लेकिन आज
0: इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। पूरे दो हफ्ते के लंबे वक्त के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल ताजा और नया कारवां आपके अपने पसंदीदा शो का।
1: जी हाँ, और जब बात हो आपकी फरमाइश की तो माहौल में एक अलग ही मिठास घुल जाती है। लेकिन हमारे इस शो की एक बहुत खास बात है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है ना?
0: बिल्कुल, हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ FM पर सिर्फ एक के बाद एक गाने चलाकर आपका मनोरंजन नहीं करते। हमारे लिए आपकी भेजी हुई फरमाइश महज एक मैसेज नहीं है, हम हर एक फरमाइश को आपके दिल की आवाज समझते हैं।
1: कितनी खूबसूरत बात कही आपने। जब कोई दूर बैठा दोस्त आपने किसी अपने के लिए कोई नगमा चुनता है तो उसमें बहुत सी भावनाएं छुपी होती है। हमारा काम बस यही है कि आपकी उस अनकही भावना को, आपके दिल की उस आवाज को दूसरों तक पहुंचाए,
0: और रेडियो की इन जादुई तरंगों के जरिए दिलों को दिलों से जोड़ते चले जाएं, क्योंकि संगीत ही तो वो भाषा है जो हर दूरी को मिटा देती है।
1: तो चलिए दोस्तों, अब बातों का सिलसिला यहीं थोड़ा थामते हैं और आपके दिल की बातें संगीतमय अंदाज में शुरू करते हैं। अपनी अपनी फरमाइशों की डायरी खोल लीजिए और बहने दीजिए इन सुरों को अपने घर आंगन में। भारत सोपोरी और आरजे गिरनी के साथ शुरुआत करते हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम की, और लेते हैं पहली फरमाइश। पहली फरमाइश आई है फिल्म लाखों में एक के गाने की, जिसके बोल है चंदा ओ चंदा, और इस गाने को आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। ये फरमाइश भेजने वाली श्रोता है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी पलोमा व डॉक्टर ईशानी, और ये फरमाइश आई है सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर से। और साथ में ही इसी गाने की फरमाइश हमारे पास भेजी है कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सईद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम, अदीब और अन्य परिवार वाले। लीजिए पेश है इन सब का पसंदीदा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवील महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है PS नहावकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म बंबई का बाबू से गीत। गीत के बोल है दीवाना मस्ताना हुआ दिल। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी ने। PS नहावकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

चलिए अब सुनते हैं आपकी पसंद का अगला नगमा, जो है फिल्म चितचोर से। इस गीत के बोल है आज से पहले आज से ज्यादा, और इसको अपनी आवाज से सजाया है यशोदास ने, और ये फरमाइश हमारे पास आई है दनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से, और भेजने वाली श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। पेश है आपके पसंद का ये फरमाइशी गीत।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है समस्तीपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता है मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से, सोनम सिंह और अनामिका सिंह। ये सभी सखियां सुनना चाहती हैं फिल्म आंखें से गीत। गीत के बोल है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

और अब पेश है आपकी फरमाइश का अगला गीत, जो फिल्म तराना से है और गाने के बोल है हम तुम दोनों साथ में भीग जाएंगे। और इस गाने की फरमाइश हमारे पास आई है दयाल बाग अम्बाला से, और भेजने वाली श्रोता है हनी और अनिल, और इस गाने को अपनी आवाज से सजाया है उषा मंगेशकर और शैलेंद्र ने। लीजिए पेश है इनका पसंदीदा गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है चंद्रूप नगर अम्बाला कैंट से और भेजने वाले श्रोता है मदन गोपाल सैनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म इजाजत का गाना जिसको अपनी आवाज से सजाया है आशा भोसले ने और गाने के बोल है खाली हाथ शाम आई है। पेश है इनका पसंदीदा गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है कोलकाता से और भेजने वाले श्रोता है विशाली, राजीव, विराज और मिनी। ये सब सुनना चाहते हैं एल्बम सॉन्ग तुझे लगे ना नजरिया, और इस गाने को अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया है सोनू निगम ने। लीजिए, पेश है इनका ये पसंदीदा गीत।

आपकी फरमाइशों का सिलसिला यूं ही जारी है। अब लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है अम्बाला सिटी से, और भेजने वाले श्रोता है शुगन गोडियाल, मीनाक्षी और प्रथम। ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म ब्लैकमेल का गाना जिसके बोल है पल पल दिल के पास, और इस गाने को अपने खूबसूरत आवाज से सजाया है किशोर कुमार जी ने। लीजिए सुनते हैं ये यादगार गीत।

सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है झारखंड से। भेजने वाले श्रोता है आकाश, देव, रिया, प्रिया, शानू, नूतन, मुकेश और उनके अन्य दोस्त। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सावन को आने दो से गीत। गीत के बोल है तुम्हें गीतों में डालूंगा सावन को आने दो। इस गीत को आवाज दी है यसुदास ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है अरुणाचल प्रदेश से, भेजने वाली श्रोता है सुकू। ये एक पंजाबी गाना सुनना चाहती है जिसके बोल है बत्तियां बुझाए रख दी। नीचे पेश है ये गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप किसी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत की या हरियाणवी या पंजाबी गीत की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप अपनी फरमाइश हमें भेजिए हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। आपको लिखना होगा अपना नाम, जगह कहां से आप लिख रहे हैं, अपने सभी दोस्तों के नाम जो इस गीत को सुनना चाहते हैं, और भेजिए हमारे नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। सुनाते हैं आपको अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। ये सुनना चाहते हैं फिल्म चरस से गीत। गीत के बोल है आजा तेरी याद आई। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए प्रस्तुत है इनकी पसंद का ये मनमोहक गीत।

0: हर जाई किया जा तेरे किया जा तेरे।
1: लीजिए पेश है आपकी पसंद का एक और गीत जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है अरुणाचल प्रदेश से और भेजने वाली श्रोता है माही। ये सुनना चाहती है फिल्म जुर्म का गाना जिसके बोल है जब कोई बात बिगड़ जाए और इस गाने को खूबसूरत अंदाज में गाया है कुमार सानू ने। लीजिए सुनते हैं इनका पसंदीदा गीत।

0: श्रोताओं, ये था आज का हमारा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, और पेश करते हैं आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अंबाला छावनी से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधू, उनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जसबीर सिंह संधू, वरनीत कौर, अवनीत कौर और सारा संधू परिवार। ये सुनना चाहते हैं एक हरियाणवी गीत, फिल्म का नाम है चंद्रावल और गीत के बोल है जीजा तू काला मैं घोरी घनी। इसी फरमाइश के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर। नंबर बता देते हैं आपको एक बार फिर, जो है 7056413010705641310। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा,
1: और इसी के साथ आज की संगीत यात्रा को यही विराम देते हैं। कुछ लम्हे रह जाएंगे यादों में, कुछ सुर दिल के जज्बातों में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: और मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: 90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
4: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
3: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: दाज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज की शाम हम सजाए हैं गजल के उस शहजादे पंकज उदास जी के नाम, दर्द जज्बात मोहब्बत और अल्फाजों के सुरूर के साथ पेश है श्याम गजल।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: बधाई हो ताऊ, अपना मनोज 12वीं में अच्छे नंबर से पास हो गया।
3: वाह बेटा, नाम रोशन कर दिया गांव का।
2: बस आप लोगों का आशीर्वाद है।
3: अब आगे क्या करने का सोचा है?
2: आगे का तो अभी फिलहाल
3: रे, अब उसे हरियाणा की किसी ITI में दाखिला दिला दे, ताकि वक्त रहते अपने हुनर को सवारे और जीवन में आगे बढ़ सके। प्रदेश के युवा राज्य की 197 सरकारी व 180 प्राइवेट ITI में 1 या 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कुल 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
4: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।

पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज का एपिसोड पेश करेंगे आरजे किरणी। आज बात करेंगे सदाबहार।

0: सभी श्रोताओं को मेरा यानी गिरनी का नमस्कार। सुनहरे पल का एक और अंक लेकर हाजिर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक महान वर्सटाइल गायक मोहम्मद रफी साहब के बारे में और सुनेंगे उनके गाए हुए गीत।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना।
0: मोहम्मद रफी का जन्म अमृतसर के पास कोटला सुल्तान में 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। इसके बाद उनका परिवार 1932 में लाहौर चला गया। लाहौर में अपने होने वाले जीजा की मदद से रफी साहब मुंबई आए, जहां उन्होंने गायकी की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। रफी ने अपना पहला गाना श्याम सुंदर की फिल्म गाँव की गोरी के लिए गाया। इस गाने को उन्होंने जे एम दुरानी के साथ मिलकर गाया था। लोगों का मानना था कि मोहम्मद रफी की आवाज शमी कपूर पर सबसे ज्यादा फपती थी, लेकिन मोहम्मद रफी के पसंदीदा एक्टर शमी कपूर नहीं बल्कि राजेंद्र कुमार थे, जिनको टीवी पर देखते ही रफी मानो खो से जाते थे।

एक बार संजय गांधी किशोर कुमार से बेहद नाराज हो गई थी। उन्हें मनाने और किशोर कुमार को संजय गांधी के गुस्से से बचाने के लिए खुद मोहम्मद रफी ने खास तौर से संजय गांधी से मुलाकात की थी। रफी की गायकी के लिए मोहब्बत को इसी से समझा जा सकता है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब उस समय उनकी पहली पत्नी ने भारत में रुकने से मना कर दिया था। ऐसे में रफी ने यह फैसला किया कि वो अपने पहले प्यार यानी सिंगिंग के खातिर मुंबई में ही रुकेंगे, जिसके बाद वो अपनी पहली पत्नी से अलग हो गई।

मोहम्मद रफी पार्श्व गायक बन गए, पहचान भी हो गई, लेकिन अभी उनकी पहचान जनता को दीवाना बना दे ऐसे गायक की नहीं थी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला। हुआ यूं कि फिल्म भेजू बावरा बन रही थी। संगीतकार नौशाद फिल्म के गाने तलत महमूद से गवाने वाले थे, लेकिन एक दिन उन्होंने तलत महमूद को सिगार पीते देख लिया। एक गायक सिगरेट पिए उन्हें ये पसंद नहीं था, सो उन्होंने रफी साहब को मौका दिया। भेजू बावरा के गीतों ने इतना तहलका मचाया कि मोहम्मद रफी रातों रात लोगों के चहेते गायक बन गए। रफी बहुत कम बोलने वाले, जरूरत से ज्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। शर्मीले इतने थे कि रफी साहब ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उनके सभी इंटरव्यू उनके बड़े भाई अब्दुल अमीन हैंडल करते थे। कहते हैं कि रफी ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ दो इंटरव्यू दिए थे।

वैसे तो रफी साहब के प्रति लोगों में दीवानगी के कई किस्से मशहूर है, लेकिन ये किस्सा नौशाद साहब ने खुद सुनाया था। हुआ यूं कि एक बार एक अपराधी को फांसी दी जा रही थी, उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उसने न तो अपने परिवार से मिलने की इच्छा जताई और न ही किसी खास खाने की फरमाइश की। उसने कहा कि वो मरने से पहले रफी का बेजू बावरा फिल्म का गाना ए दुनिया के रखवाले सुनना चाहता है। इस पर एक टेप रिकॉर्डर लाया गया और उसके लिए वो गाना बजाया गया। वैसे बता दे कि इस गाने के लिए मोहम्मद रफी ने 15 दिनों तक रियाज किया और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज इस हद तक टूट गई थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रफी शायद कभी अपनी आवाज वापस नहीं पा सकेंगे।

0: फिल्म नीलकमल के गाने बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए रफी साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। इस गीत को गाते समय कई बार उनकी आंखें नम हो गई थी और इसकी वजह ये थी कि इस गीत को रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिनों में शादी थी, इसलिए वो काफी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला।
1: बाबुल की दुआएं लेती जा जा तू।

हिंदी सिनेमा को अनगिनत नगमे देने वाले महान गायक मोहम्मद रफी जब अपने करियर के शिखर पर थे तो सिर्फ मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना बंद कर दिया था। दरअसल रफी हज करने गए थे और मौलवियों का कहना था कि हाजी होने के बाद गाना बजाना बंद कर देना चाहिए। रफी के मन में भी ये बात बैठ गई। हज से लौटकर कई महीने गुजर गए और रफी ने कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया। बाद में नौशाद साहब ने उन्हें बहुत समझाया और रफी के बेटू ने भी गाना शुरू करने की सलाह दी। तब जाकर उनका मन बदला और दोबारा गाना शुरू किया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। रफी साहब को पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जब भी किसी शादी में जाते थे तो ड्राइवर से कहते थे कि यहीं खड़े रहो। रफी सीधे कपल के पास जाकर उन्हें बधाई देते थे और फिर अपनी कार में आ जाते थे। वो जरा देर भी शादी में नहीं रुकते थे। मोहम्मद रफी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के इंसान थे, न किसी से ज्यादा बातचीत और ना ही किसी से कोई लेना देना। न शराब पीते थे, ना ही सिगरेट पीते थे। पार्टियों का शौक भी नहीं था, ना ही देर रात घर से बाहर रहने की आदत। संकोची तो इतने थे कि वो कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। बस वे आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो एक रुपया लेकर गीत गा दिया करते थे।

रफ़ी साहब न सिर्फ बहुत अच्छे गायक थे पर बेहद उम्दा इंसान भी थे, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वह इंसान बड़े थे या कलाकार। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी ज़िंदगी में करीब 26,000 गीत गाए और लगभग हर भाषा में। वर्ष 1946 में फिल्म अनमोल गढ़ी में तेरा खिलौना टूटा से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे किशोर प्रेम का अलहड़पन हो, दिल टूटने का दर्द हो, प्रेमिका से इजहार मोहब्बत हो या सिर्फ उसके हुस्न की तारीफ, मोहम्मद रफ़ी का कोई सानी नहीं था। मोहब्बत ही नहीं, इंसानी जज्बात के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कवाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गजल, मोहम्मद रफ़ी ने गायकी में सभी भावनाओं को बखूबी निभाया। ये सच है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा फनकार न कभी हुआ है और न कभी होगा।

उत्तर भारत में कोई बारात नागिन डांस के बिना नहीं निकलती, लेकिन ये भी सच है कि बारात में आज मेरे यार की शादी है भी अनिवार्य रूप से गाया जाता है। आदमी सड़क का फिल्म का ये गीत रफी साहब ने गाया है। उनका एक और गीत जात पात और धर्म का भेद किए बिना बारातों में खूब गाया जाता है। ये गाना दोस्ती की तरफ से नए दुल्हे की शान में कसीदे पढ़ने के अंदाज से गाया जाता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देशभक्ति के गीत का इस्तेमाल जिसने भी दुल्हे के लिए पहली बार किया था उसे 100 तोपों की सलामी। एक और किस्सा अमिताभ से सुनिए। 2 दिन का कार्यक्रम था। पहले दिन रफी साहब गा चुके थे। दूसरे दिन सुबह हमें पता चला कि आज जिन गायक का प्रोग्राम है वो नहीं आ रहे हैं। रफी साहब एयरपोर्ट जा चुके थे। हम लोगों ने एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगाई। प्लेन उड़ने ही वाला था। एयरपोर्ट अथॉरिटी से निवेदन करके प्लेन में पहुंचे और रफी साहब को समस्या बताई। रफी साहब बिना कुछ कहे तत्काल हमारे साथ नीचे उतर आए। इस तरह हम परेशानी में फंसने से बच गए। बता दे, रफी साहब को अमिताभ की दीवार बहुत पसंद थी।

मोहम्मद रफी का निधन 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक आने से हुआ था। मृत्यु से बस कुछ घंटे पहले ही रफी एक गाने की रिकॉर्डिंग करके आई थी। ये गाना था फिल्म आसपास का, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त। मोहम्मद रफी का निधन रमजान के महीने में हुआ था। जिस दिन उनकी अंतिम विदाई थी उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, फिर भी अंतिम यात्रा में हजारों लोग सड़कों पर थे और सबने नम आंखों से अपने इस पसंदीदा गायक को विदाई दी। रफी साहब के निधन पर भारत सरकार द्वारा 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया था। उनके निधन के बाद संगीतकार नौशाद ने कहा था, कहता है कोई दिल गया, दिल भर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर।

बेताज बादशाह मोहम्मद रफी के बारे में जितना कहा जाए, जितना बोला जाए, उतना ही कम है। उनकी आवाज उनके गानों की तरह ही अमर हो गई। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। और जाने से पहले मोहम्मद रफी की गाई हुई दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज का कार्यक्रम आधारित था सदाबहार गायक मोहम्मद रफी साहब पर। प्रस्तुत किया आरजे किरली ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

गोरी में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा भूलोगे तुम भूलेंगे वो पर हम तुम्हारे

मगर रुके थे कदम, पर सफर तवील था। मुख्तसर सी चांदनी सफर के दौरान हम सफर बनी। ठगा ठगा सा मौसम, अंगड़ाइयां लेती ये हवाएं, नाजुक यादों को अपनी पनाहों में शामिल कर मुझे रास्ता बताते, सफर को खुशनुमा बनाते, माजी के पलों को लौटाते, जो मैं उनसे लिपटता, उनको छू जाता, उनकी खामोशी तोड़ता, फिर मैं कहता, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरी इबादत में

आज मौसम में ये कैसी बेचैनी है। शायद उनकी आमद का पैगाम लेकर आई है ये हवा। सदियों के फासले पल भर में मिट जाएंगे, इसका भरोसा मत करना, क्योंकि हर बार दस्तक दे चुकी है वो मेरी दहलीज पर। वो जो अपना हाले दिल बयां करने के लिए बरसों से बेताब है, शायद इसलिए यह मौसम की बेचैनी मेरे सफर में शामिल है। दश्ती तन्हाई से दामन छूटा जा रहा है, मेरी बेखुदी अब तू ही संभाल मुझे।

रास्ते ही दुश्वार पर मंजिल है करीब। दौरानी सफर जो मिले वो छूट गए, रह गए पीछे अपनी यादों के साथ। माना यादें जिंदगी का अहम सरमाया होती हैं, पर इसके बावजूद मैं जानता हूं कोई क्यों याद करे किसी को, जब जिंदगी के इस तबील सफर में रिश्तों ने अलविदा कहा हो। मुझे

मौसम है तुम्हारी यादों का, हमें बिछड़े हुए कई युग बीत गए। इन सावन की बारिशों में भीगने का मंजर आज भी आंखों के सामने ठहर जाता है। अब जब कई सावन आए और आके चले गए, पर इन भीगती हुई बारिशों में तुम्हारे मुस्कुराने का सावन न जाने क्यों खामोश हो गया। हमसे मिलता तो होगा हूबहू अंदाज उनका, हमसे मिलता तो होगा हूबहू अंदाज उनका, तुम्हें पूछने वाले लेकिन हम जैसे ना होंगे।

कुछ तो सपने थे और कुछ हकीकत। रास्ते तो थे पर बीच रहा हम सफर, खो गए पल भर में। यहां मौसम बदलते गए और तर करते रहे मेरी आंखों की खामोशी। इस काले घने धुएं में तुम्ही से मिलने की जुस्तजू बरकरार रही और रात भर जलते रहे बुझते रहे रोशनियों के दिए। फिर धीरे धीरे मेरे तुम्हारे रास्ते सिमट गए। अब गुमनामी की इन बस्तियों में तनहा पत्थरों को तराश कर क्या हासिल।

जय श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन कार्यक्रमों को पसंद भी करते हैं। और उन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के द्वारा, कॉल करके या वॉइस नोट भेजकर। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपका जो फीडबैक है हमारे तक पहुंचता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा, और स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 6 सेकंड। मैं आप सभी श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि ये सामुदायिक रेडियो जो अंबाला के लिए स्वीकृत किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हमारे अंबाला के युवाओं को, युवतियों को जगह देता है, ताकि वो अपने जिंदगी के बारे में समझें कि वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। ऐसे ही एक युवती नैना के नाम से हमारे पास पीजी कॉलेज अंबाला कैंट से आई 22 जून 2026 को, और 1 महीने के इंटर्नशिप के लिए इनको ग्रेजुएशन में बहुत ही जरूरी होता है कि वो कहीं ऐसी जगह पर इंटर्नशिप करें जहां पर वो अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में कुछ अच्छा और न्यारा करें। क्योंकि मास कम्युनिकेशन जब डिग्री आप करते हैं, आज के बच्चे जब मास कम्युनिकेशन में जब डिग्री करते हैं, तो इंटर्नशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसमें एस्पेक्ट है, और हमने नैना को यहाँ पर 1 महीने का इंटर्नशिप करने का मौका दिया, और मुझे बहुत खुशी है कि ये लड़की बहुत ही काबिल और बहुत ही कॉन्फिडेंट है, और जिसमें उन्होंने इस 1 महीने में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे तरीकों से रेडियो के प्रसारण में उन्होंने अपना योगदान दिया। जब हमने उनको कहा कि आप कंटेंट क्रिएट करें और आप महिलाओं के ऊपर कोई कार्यक्रम बनाएं, तो उन्होंने कार्यक्रम तैयार किया जिसका नाम उन्होंने रखा शक्तिका। शक्तिका का उन्होंने 2 एपिसोड्स को तैयार किया, उनको रिकॉर्ड किया। पहला एपिसोड तो ऑन ईयर हुआ है, दूसरा एपिसोड भी उन्होंने रिकॉर्ड करके तैयार किया है, जो कुछ ही दिनों में आपके पास हम लेके आएंगे प्रसारण के माध्यम से। मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको अगर जीवन में एक मौका मिलता है, उस मौके को भरपूर फायदा उसका उठाना चाहिए। उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं करना चाहिए जो नैना ने नहीं किया है। मैं उनके पेरेंट्स को साधुवाद देता हूं, अच्छे संस्कार से उन्होंने अपने बच्चों को पाला है, और उसने जो भी इस रेडियो स्टेशन के तौर तरीके थे उनको उन्होंने अपनाया, और ये एक मल्टीटास्कर होके आज अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर गई है। 31 जुलाई 2026 को आज हमने उनको यहां से एज इंटर्न विदा किया, और उनकी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और मैं नैना को अपनी ओर से, टीम रेडियो वितस्ता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ताकि वो आने वाले दिनों में अपना जो फ्यूचर है वो बनाए और उसका फ्यूचर उज्जवल हो। एक बार फिर नैना, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस एज एन इंटर्न एट FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। बेस्ट विशेस नैना। श्रोताओं, आज 31 जुलाई है। आज का दिन भारतीय संहिता के आकाश में सबसे चमकदार सितारे को याद करने का है। आज कलम के सिपाही और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है, जिससे हम सभी राष्ट्रीय लेखक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये दिन केवल एक लेखक की याद में नहीं, बल्कि समाज के उस दर्पण का उत्सव है जिससे प्रेमचंद जी ने अपने कलम से अमर कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि FM 90.0 MHz एक संस्था चलाती है जिसका नाम है व्यथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी। तो मुंशी प्रेमचंद जी की किताबों और उनके लेखन से हम भली भांति जानते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इनके लिखे नाटक भी हम आप तक पहुंचाएंगे।
कलम के समाज, कलम से समाज बदलने वाले महानायक। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में जन्मे दनपत राय, जिन्हें दुनिया मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानती है, ने साहित्य को महलों की चकाचौंध से निकलकर आम इंसान की झोपड़ी तक पहुंचाया। गोदान, गबन, कर्मभूमि जैसे कालजयी उपन्यास और ईदगाह, पूस की रात, कफन जैसी सैकड़ों कहानियों के जरिए उन्होंने समाज की कुरीतियों, गरीबी और किसानों के दर्द को जिस बेबाकी से लिखा, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। हामिद का वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना या होरी का अपना आत्मसम्मान के लिए संघर्ष, प्रेमचंद के पत्र आज भी हमारे आसपास जीवित लगते हैं। उन्होंने साबित किया कि एक लेखक की कलम में इतनी ताकत होती है कि वो सोए हुए समाज को जगा सकता है। आज का ये दिन देश के उन सभी लेखकों और साहित्यकारों को भी समर्पित है जो अपनी कलम से समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। रेडियो वितस्ता आज के इस महान विभूति के चरणों में कोटि कोटि नमन करता है जिन्होंने भारतीय साहित्य को एक अनमोल विरासत दी है। तो श्रोताओं, शब्दों के इस जादू और साहित्य की इसी महक के साथ अब समय की पाबंदी इशारा कर रही है कि आज के इस सुहाने सफर को यहीं पर एक छोटा सा ठहराव देने का। आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्स रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। जाने से पहले आपको कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूं, हर रोज आज भी लेके आया हूं और दूंगा कल के कार्यक्रमों का विवरण। आज की पंक्तियां इस तरीके से है, इन शब्दों से तैयार की गई है। पंक्तियां यूं है, वितस्ता की लहरों से बहती रहे प्रेमचंद की ये सुंदर वाणी, वितस्ता की लहरों से बहती रहे प्रेमचंद की ये सुंदर वाणी, हर कलम लिखती रहे इस देश की एक नई और सच्ची कहानी, लेकर शब्दों का उजाला आज के इस सफर को देते हैं विराम, लेकर शब्दों का उजाला आज के इस सफर को देते हैं विराम। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे लेकर उम्मीदों का एक नया पैगाम, अलविदा दोस्तों फिर मिलेंगे लेकर उम्मीदों का एक नया पैगाम। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय और ये थी आज की पंक्तियां। जाने से पहले जल्दी से आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल से नया महीना शुरू हो रहा है, अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और कल 1 अगस्त 2026 शनिवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर। वंदे मातरम से हम शुरुआत करेंगे, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत और 7:05 पर होगा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11। 8:30 होगा किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट और कल की कड़ी है तकनीक में आगे कौशल में पीछे। और 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरे पल जो रोशन पर तैयार किया गया है। 10:15 पर इनसे मिलिए एपिसोड 12। हमारे साथ होंगे अतुल भाटिया जो एक्टर डायरेक्टर है, कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 श्यामे गजल और 7:00 रेट्रो हिट्स एपिसोड 5 यादें होगा शीर्षक, ये आप सुनेंगे कल 7:00। और 8:30 कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है कुछ लम्हे तुम्हारे नाम। और श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि आप अपना फीडबैक हमारे बारे में, हमारे प्रोग्रामों के बारे में जरूर भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। उम्मीद है कि आज की कहानियों का ये कारवां और गीतों का ये महफिल आपके दिलों में एक मीठी सी याद छोड़ गई होगी। कल फिर हाजिर होऊंगा मैं टीम रेडियो वितस्ता के साथ इसी तरंग पर कुछ नई सकारात्मक बातों, सुनहरे किस्सों और सदाबहार नगमों के साथ। तब तक किताबें आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता हर दिन 6:00 से 9:00 तक। आज के इस हसीन सफर से अब मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी लेता हूं विदा।
कल तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।